0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
3: नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका गर्ग, SM हॉस्पिटल से। कुछ लोग हमें फोन करके ये जानकारी लेना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा सा दुविधा है मन में कि IVF से बच्चा हमारा अपना ही खून होगा कि नहीं होगा। ये अपने मन से आप ये शंका हटा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ही के स्पर्म और आप ही के एग्स को यूज किया जाता है एम्ब्रियो बनाने के लिए, तो आपके अपने ही गैमेट्स को यूज किया जाता है।
4: अब आपके आंगन में भी गूंजेगी बच्चों की गिलकारियां। संपर्क कीजिए ब्लेस फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, कट रोड, मेरठ। कॉन्टैक्ट 8650554433।
0: निसंतानता से पूरी तरह से छुटकारा, आइए ब्लेस फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, डॉक्टर अलका गर्ग जी के पास। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

नमस्कार, मैं मनोज वाजपेयी। मेरा बचपन ऐसे ही एक छोटे गांव में बीता है और मैंने लोगों को काला आजार की बीमारी से होने वाली तकलीफों से लड़ते हुए देखा है। इसलिए मैं जानता हूं कि काला आजार जैसी जानलेवा बीमारी कितनी तकलीफ दे सकती है। जैसे मलेरिया मच्छर से फैलता है, उसी तरह काला आजार बालू मक्खी से फैलने वाली एक घातक बीमारी है। तो आज मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे, शरीर में कालापन दिखे या पेट में सूजन रहे, तो तुरंत पास के सरकारी अस्पताल में इसकी जांच कराएं। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल में केवल मुफ्त जांच और इलाज ही नहीं, मजदूरी का मुआवजा भी मिलता है। बस एक आखिरी बात, जब भी सरकारी छिड़काव कर्मी बालू

0: तरक्की के खात्मे के लिए आपके घरों में आए तो कृपया उनकी सहायता पूरी तरह से करें। याद रखिए, आपका थोड़ा सा सहयोग खत्म करेगा काला आजार रोग।
1: स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: यो, सुन लो भाई, सुन लो बहना, फाइलेरिया को भगाने का मौका नहीं गवाना।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। यहां हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नहीं है। कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं, कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है, और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं, या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं। और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक मां की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुंचने की कहानी। टीकन भाभी, स्वागत है।
1: धन्यवाद। और मैं तो यही कहूंगी कि किस भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं तो माँ बाप डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है कि कई लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं और अफवाह पर विश्वास कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इस सब अफवाहों के बीच छिप गया है। हम आज उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे।
0: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है। मां थकी हुई है लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलता हूं।
1: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर। अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई है। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस ये कागज मुझे पकड़ाकर चली गई ट्यूशन के लिए। हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूँ। ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं पाती हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं।
2: अरे भाभी, ये HPV वे या जो भी नाम हिया इसका एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने तो मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन आ रहे हैं। को कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब तो बैग छे इतने छोटे हैं। कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं। कोई कह रहा है बांझ जो जाएंगी बेटियां, किसकी सुने। ये तो बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा।
1: और तुमने वीडियो देखा?
2: देखा, सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे माने क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े हैं।
0: सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता। हमारे पास, क्या तुम्हारे अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और क्या चल रहा है।
2: टीकन भाभी, एक बात कहूं, हमारे यहाँ जो भी नई चीज आती है पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर ही क्यों आजमाते हैं, ये भी मन में आता है। ऊपर से ये भी सुनने को मिला कि पहले 3 डोज लगती थी, अब 1 बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये जल्दीबाजी है।
1: तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन दी जा रही है उसकी 1 डोज प्रभावी मानी गई है। ये कोई हवा में लिया फैसला नहीं है, दुनिया भर में शोध, सुरक्षा निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100-125 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है।
2: पर देखो, हमें तो यही डर लगता है कि कहीं बेटी के आगे चलकर शादी ब्याह, बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए।
1: यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है। पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है, एचपीवी वैक्सीन से बांझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और सिर्फ पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका आधार नहीं है।
0: यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आज माँ है वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाह के एक बड़े झूठ को तोड़ता है। और यही SSLK की ताकत है, मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
2: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठ है, पर पीरियड्स के बारे में? लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो?
1: देखो, इस पर भी साफ जानकारी है, HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती और पीरियड्स के दौरान भी ये सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय और वैज्ञानिक सामग्री एक ही बात कह रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया की बात क्यों माने?
2: इसलिए कि सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं, सच तो धीरे धीरे समझ में आता है।
1: बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है, सच धीरे चलता है, इसलिए हमें सच को बैठकर सुनना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का चेहरा देखो और सोचो, क्या उसे एक ऐसे कैंसर से बचाने का मौका छोड़ दोगी जो रोका जा सकता है?
0: ठीकन भाभी, यही तो जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसरों में है जिनकी रोकथाम संभव है। HPV संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है, पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
2: एक बात और, अगर ये इतना अच्छा है तो खर्चा कितना आएगा? सच कहूं टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है।
1: ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज। लेकिन ये वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी मुफ्त। यही नहीं, कई संदेशों में बार बार कहा गया है, सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
2: मुफ्त? सच में?
1: हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। और जहाँ व्यवस्था हो वहाँ यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी जा रही है। मगर यदि ये सब समझ में ना आए तो सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में पूछो। डॉक्टर से पूछो, ANM से पूछो, आशा से पूछो। फॉरवर्ड भेजने वाले से क्यों पूछना है?
2: सुनने में आसान लगता है, पर घर वाले भी तो माने। कोई सास कुछ कहेगी, कोई पड़ोसन कुछ, फिर पति कहेगा, देख लो तुम जैसा ठीक समझो। लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर आ गिरती है,
1: इसीलिए तो मैं कहती हूँ, माँ को अकेला मत छोड़ो। ये सिर्फ माँ का फैसला नहीं, परिवार की समझ का फैसला होना चाहिए। पर अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। देखो, कोई भी समझदार फैसला 3 चीजों पर टिकता है, वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी। बाकी सब शोर है।
0: श्रोताओं, जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना आए और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे। इसलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा।
2: लो, फिर मैसेज आया। पड़ोस वाली कमला लिख रही है, मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था। अब बताओ ये क्या माने?
1: कभी कभी हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन यही हर इंजेक्शन में संभव है। इससे ये नहीं साबित होता कि टीका खतरनाक है। बड़ी बात यह है कि गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं और सुरक्षा निगरानी लगातार होती है। इसे ही विज्ञान कहते हैं, निगरानी, प्रमाण, समीक्षा। अफवाह क्या करती है? एक घटना उठाती है, उसे बढ़ाकर पूरा सच बना देती है।
2: अच्छा, मान लो मैं कल स्वास्थ्य केंद्र चली गई, वहां क्या पूछूं?
1: सीधा पूछो, मेरी बेटी 14 साल की है, क्या एचपीवी वैक्सीन यहाँ मुफ्त उपलब्ध है? क्या ये एक डोज है? क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है? क्या इससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? डॉक्टर तुम्हें साफ जवाब देंगे, और अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
2: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूं, मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है, कहीं मैं ही गलत फैसला ना कर दूं।
1: यही तो समझदारी है, जो नहीं पता उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता, उसके बाद सही जगह से जानना। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं, और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है।
0: इसीलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूरदृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों, जानकारियों, मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होते हैं। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए, परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, न कि अफवाह। सही जानकारी ही लाभकारी होती है।
2: टीकन, तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये बात मेरे मन में अटक गई। हम तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि बस अब बचना मुश्किल।
1: इसलिए जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है। जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है, कम उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकरण और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच, दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ घर घर जानी चाहिए।
2: यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जांच की समझ।
1: बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घर में आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता, पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है। ये बदलना होगा।
0: यही SSLK का मकसद है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं सुनीता ने क्या फैसला लिया।
2: टीकन भाभी, मैंने ठान लिया है, कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे, वहां डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना हां कहूंगी ना ना। लेकिन एक बात पक्की है, अब मैं फॉरवर्ड देखकर फैसला नहीं करूंगी।
1: बस यही जीत है। सही सवाल पूछना ही आधी सुरक्षा है,
2: और अगर डॉक्टर वही कहे जो तुम कह रही हो तो मैं अपनी बेटी को टीका लगवाऊंगी। फिर जो पड़ोसन पूछेगी उसे भी यही कहूंगी, फॉरवर्ड नहीं, तथ्य देखो।
1: और अगर कोई बोले कि हमारे जमाने में तो नहीं लगा, तो कहना हमारे जमाने में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं थी, इसलिए आज जो उपलब्ध है उसे अपनाने में समझदारी है, ठुकराने में नहीं।
0: जाने से पहले एक छोटा सा संवाद और। कई बार लोग कहते हैं हम तो गांव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियां कहां। ये भी गलतफहमी है। बीमारी जगह देखकर नहीं आती, जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकना चाहिए। सरकार इसलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित न रहे।
2: सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों की होती है, पर जब घर में किसी को कुछ हो जाता है तब समझ आता है कि बीमारी जात, धन, जगह देखकर नहीं आती।
1: और इसलिए रोकथाम सबसे बराबरी वाली चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात भी है। जो चीज सिर्फ पैसे वालों तक सीमित थी वो अब आम परिवारों तक पहुंच रही है। इसे शक से नहीं समझ से देखना चाहिए।
2: पर हाँ, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए।
1: बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे होगा पूछो। जानकारी मांगना अधिकार है, यही नागरिक समझ है।
0: और एक जरूरी बात, यदि किसी माँ को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है, लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, विज्ञान और प्रमाण से गाइडेड होने चाहिए, वायरल फॉरवर्ड से नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है।
2: मैं सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी। उसकी बेटी भी इसी उम्र की है, वो तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है।
1: उसे साथ लेकर जाओ, दो लोग जाएंगे तो दो घरों का डर टूटेगा, फिर शायद चार घरों में बात पहुंचेगी। सेहत की जानकारी भी चूल्हे की आग की तरह है, एक घर से दूसरे घर गर्मी पहुंचाती है।
0: ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, ANM, डॉक्टर, माँ, पड़ोस, स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोले।
2: अच्छा टीकन, अगर मेरी बेटी पूछे अम्मा आपने पहले क्यों डर किया, तो मैं क्या कहूँ?
1: कहना क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी अब समझ गई हूँ, इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है।
0: बहुत सुंदर, और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जिसमें माँ बेटी के बीच डर के बजाय संवाद हो। यही संवाद भविष्य बदलता है।
1: और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती हैं हमें ये सब नहीं आता, वहां भी रास्ता है। सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो। जानकारी का दरवाजा एक नहीं कई है।
2: अब मुझे लग रहा है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है। डर अभी भी है, पर अब डर के साथ

0: सामने जवाब भी है।
1: बस यही चाहिए, सवाल रहे जवाब भी रहे, तभी घर सही निर्णय तक पहुंचता है।
2: शुक्रिया टीकन भाभी आपका, और सुनीता जी आपका भी। साथियों, अब अंत से पहले आज की मुख्य बातें संक्षेप में। पहली, क्वाड्रिवेलेंट एचपीवी वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। छठी, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें।
1: और मेरी तरफ से एक बात और, मां होना सिर्फ डरना नहीं है, पूछना भी है, और पूछकर सही जवाब तक पहुंचना, वही असली जिम्मेदारी है।
0: और मेरी तरफ से, मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं, पर उसे झूठ से पालूंगी भी नहीं, सही जानकारी लेकर ही फैसला करूंगी।
2: यही है सेहत सही लाभ कई की सीख, चिंता से समझ तक और समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल में जानकारी लें, और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही हैं, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक याद रखिए, तथ्य चुनिए, सुरक्षा चुनिए। अब एक उपयोगी सूचना, यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में यू विन पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की जानकारी ले सकते हैं। यदि ये आपके लिए कठिन है तो भी चिंता की बात नहीं, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से सीधे संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं।
3: ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

अपने टैलेंट का प्रमाण पत्र लेके सोसाइटी में झंडा गाड़ने निकले हो, दांत चियार के टाइम भूल जाओगे। पहले सही व्यक्तित्व के समक्ष दांत निपोरना सीखो। ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम किसको जानते हो, किसको पहचानते हो, कौन तुमको जानता है, कौन तुमको मानता है, किसका भी बच्चा तुम्हारा फैन है और बड़े घर की कन्या पटाने वाला फंडा तो है। यह है, इसको कहते हैं

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: तुम्हारे बाल तो यार बड़े अच्छे हैं और हेयर स्टाइल तो कमाल का है। ऐसी कुछ लाइंस वो लोग कभी नहीं सुन पाते जिनके सिर पर बाल कम होते हैं या होते ही नहीं हैं। मगर अब ऐसे लोग भी सुनेंगे अपने बालों की तारीफ डाविंसी क्लिनिक में आकर, जो कि है स्टेट ऑफ आर्ट सुपर स्पेशलिटी सेंटर फॉर हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, जहां पर डॉक्टर भानु प्रताप सिंह करेंगे आपके बालों का ट्रीटमेंट, जो कि है प्लास्टिक कॉस्मेटिक एवं बाल प्रत्यारोपण विशेषज्ञ।
2: नो पेन नो स्कार नो स्टिचेस, वर्ल्ड क्लास टेक्निक, नेचुरल एंड परमानेंट रिजल्ट्स, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लास्टिक सर्जन, सेटिस्फाइड पेशेंट्स इंक्लूडिंग सेलिब्रिटीज, मॉडल्स, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, टीचर्स। द अविंसी क्लिनिक।
1: कॉन्टेक्ट नंबर 7055200128। एड्रेस 36 BSNL ऑफिस के सामने, तेजगढ़ी क्रॉसिंग, गर्ड रोड, मेरठ।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका गर्ग SM हॉस्पिटल से। कुछ लोग हमें फोन करके ये जानकारी लेना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा सा दुविधा है मन में कि IVF से बच्चा हमारा अपना ही खून होगा कि नहीं होगा। ये अपने मन से आप ये शंका हटा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ही के स्पर्म और आप ही के एग्स को यूज किया जाता है एम्ब्रियो बनाने के लिए, तो आपके अपने ही गैमेट्स को यूज किया जाता है।
5: अब आपके आंगन में भी गूंजेगी बच्चों की गिलकारियां। संपर्क कीजिए ब्लेस फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, कट रोड, मेरठ। कॉन्टैक्ट 8650554433।
0: निसंतानता से पूरी तरह से छुटकारा, आइए ब्लेस फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, डॉक्टर अलका गर्ग जी के पास। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
6: अरे बहन, कहाँ खोई हो और बहुत कमजोर भी लग रही हो, कोई परेशानी है क्या?
7: क्या बताऊँ बहन, तबीयत बहुत खराब रहती है। ऊपर से डॉक्टर कह रही थी कि बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
6: अरे तो तुम्हें तो डॉक्टर प्रियंका गर्ग से मिलना चाहिए।
7: अच्छा, डॉक्टर प्रियंका गर्ग, उत्तर प्रदेश की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका गर्ग, जो कि दूरबीन विधि से बच्चेदानी के सभी प्रकार के ऑपरेशन करने वाली मेरठ की पहली महिला डॉक्टर हैं। और तुम्हें पता है, इन्हें 20 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है।
8: डॉक्टर प्रियंका गर्ग, MBBS MS गोल्ड मेडलिस्ट, पीकॉक डिप्लोमा इन गायनो एंडोस्कोपी केल जर्मनी, एक्स एसोसिएट प्रोफेसर LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ, अपने 15 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ आपके लिए मेरठ में।
1: फॉर कंसल्टेंसी यू मे विजिट न्यूटिमा हॉस्पिटल, ऑपोजिट LLRM मेडिकल कॉलेज, गढ़ रोड, मेरठ। यू मे कॉन्टेक्ट 9837056192।
0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: नहीं,
1: लड़का आगे बढ़ता है,
0: हाँ।
1: लड़की पीछे हटती है,
0: फिर
1: लड़का लड़की को पकड़ लेता है,
0: फिर
1: लड़की शर्माकर मुस्कुरा दे तब बात।
0: नहीं समझा।
2: अबे लड्डू,

0: के रास्ते में बहुत मुश्किलें हैं। फूलों को पाने के लिए कभी कभी कांटों से उलझना पड़ता है। रोमियो जूलियट का किस्सा सुना?
1: नहीं।
0: लैला मजनू का?
1: नहीं।
0: अनारकली का?
1: नहीं।
0: ओ, तुम तो 100% देसी घी का लड्डू निकला। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए फॉर्मूला नंबर 440 ही ठीक रहेगा।
1: वो क्या?

0: वास्तु कृष्णा के साथ
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: को थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: तुम्हारे बाल तो यार बड़े अच्छे हैं और हेयर स्टाइल तो कमाल का है। ऐसी कुछ लाइंस वो लोग कभी नहीं सुन पाते जिनके सिर पर बाल कम होते हैं या होते ही नहीं है।
2: मगर अब ऐसे लोग भी सुनेंगे अपने बालों की तारीफ डाविंसी क्लिनिक में आकर, जो कि है स्टेट ऑफ आर्ट सुपर स्पेशलिटी सेंटर फॉर हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, जहां पर डॉक्टर भानु प्रताप सिंह करेंगे आपके बालों का ट्रीटमेंट, जो कि है प्लास्टिक कॉस्मेटिक एवं बाल प्रत्यारोपण विशेषज्ञ।
3: नो पेन नो स्कार नो स्टिचेस, वर्ल्ड क्लास टेक्निक, नेचुरल एंड परमानेंट रिजल्ट्स, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लास्टिक सर्जन, सेटिस्फाइड पेशेंट्स इंक्लूडिंग सेलिब्रिटीज, मॉडल्स, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, टीचर्स। द अविंसी क्लिनिक।
2: कॉन्टेक्ट नंबर 7055200128। एड्रेस 36 BSNL ऑफिस के सामने, तेजगढ़ी क्रॉसिंग, गर्ड रोड, मेरठ।
4: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
5: नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका गर्ग SM हॉस्पिटल से। कुछ लोग हमें फोन करके ये जानकारी लेना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा सा दुविधा है मन में कि IVF से बच्चा हमारा अपना ही खून होगा कि नहीं होगा। ये अपने मन से आप ये शंका हटा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ही के स्पर्म और आप ही के एग्स को यूज किया जाता है एम्ब्रियो बनाने के लिए, आपके अपने ही गैमेट्स को यूज किया जाता है।
6: अब आपके आंगन में भी गूंजेगी बच्चों की गिलकारियां। संपर्क कीजिए ब्लेस्ट फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, कट रोड, मेरठ। कॉन्टैक्ट 8650554433।
0: निसंतानता से पूरी तरह से छुटकारा, आइए ब्लेस्ट फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, डॉक्टर अलका गर्ग जी के पास। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
7: अरे बहन, कहाँ खोई हो और बहुत कमजोर भी लग रही हो, कोई परेशानी है क्या?
8: क्या बताऊँ बहन, तबीयत बहुत खराब रहती है। ऊपर से डॉक्टर कह रही थी कि बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
7: अरे तो तुम्हें तो डॉक्टर प्रियंका गर्ग से मिलना चाहिए।
8: अच्छा, डॉक्टर प्रियंका गर्ग, उत्तर प्रदेश की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका गर्ग, जो कि दूरबीन विधि से बच्चेदानी के सभी प्रकार के ऑपरेशन करने वाली मेरठ की पहली महिला डॉक्टर हैं। और तुम्हें पता है, इन्हें 20 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है।
9: डॉक्टर प्रियंका गर्ग, MBBS MS गोल्ड मेडलिस्ट, पीकॉक डिप्लोमा इन गायनो एंडोस्कोपी केल जर्मनी, एक्स एसोसिएट प्रोफेसर LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ, अपने 15 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ आपके लिए मेरठ में।
2: फॉर कंसल्टेंसी यू मे विजिट न्यूटिमा हॉस्पिटल, ऑपोजिट LLRM मेडिकल कॉलेज, गर्ड रोड, मेरठ। यू मे कॉन्टेक्ट 9837056192।
10: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
11: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
12: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
11: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
10: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
13: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
14: अरे अंकल सुनिए जरा।
15: हाँ बेटा बोलो।
14: अंकल जी वो पापा की आँखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता। और आपने भी तो अभी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था, तो हमें भी कोई डॉक्टर सजेस्ट कर दीजिए।
16: बेटा तुम अपने पापा को लेकर डॉक्टर प्रियांगर के पास जाओ, जो मेरठ के नंबर 1 आँखों के डॉक्टर हैं, और मैंने भी अपनी आँखों का इलाज उन्हीं से कराया था।
17: डॉक्टर प्रियांगर, MBBS, MS, ऑप्थल्मोलॉजी, FNB, VR सर्जन, FICO, लंदन, FAICO, FVRS, PDCR, रेटिना सर्जन एवं ROP स्पेशलिस्ट
18: विद मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो करते हैं रेटिना की सभी बीमारियों का इलाज। नवजात शिशु के रेटिना की जांच, एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन और साथ ही में लेसिक लेजर द्वारा चश्मा हटवाएं।
19: फॉर कंसल्टेंसी यू मे विजिट न्यूटिमा हॉस्पिटल, ऑपोजिट LLRM मेडिकल कॉलेज, गढ़ रोड, मेरठ। यू मे कॉन्टेक्ट 9837056192।
20: डॉक्टर प्रियांक गर्ग, न्यूट्रिमा आई केयर, आओ अच्छा देखें।

0: जय हिंद दोस्तों, मैं वास्तु राज कृष्णा सुभारती विश्वविद्यालय के इस स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। हमारे देश में देखने के लिए मिलता है महिलाएं जो दर्द से पीड़ित होती हैं, अक्सर उनके पैरों में कमर में दर्द की समस्या रहती है, तो फिजियोथेरेपी बताया जाता है। तो अगर कभी आप ऐसे किसी क्लिनिक पर या किसी अस्पताल में गए होंगे जहां पर फिजियोथेरेपी किया जाता है, तो आपके मन में कई बार यह भी आया होगा कि ये जो पढ़ाई है फिजियोथेरेपी की, ये कहां से की जाती है, क्योंकि इसमें अच्छा स्कोप होता है, अच्छा कमाई का ये साधन या जरिया बन सकता है। तो इसी बात के समाधान के लिए आज हमने ज्योति राव फुले कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के प्रिंसिपल आदरणीय डॉक्टर अमित कुमार गोयल जी को आमंत्रित किया है। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे पॉडकास्ट में। सर, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपनी तरह से फिजियोथेरेपी क्या है, जरा हमारे लिसनर्स को और व्यूवर्स को थोड़ा बताएं।
1: फिजियोथेरेपी एक आजकल एक बहुत ही अपकमिंग ग्रोइंग प्रोफेशन है
0: जी,
1: जिसके अंदर हम लोग पेशेंट्स को जो ट्रीट करते हैं वो बिना किसी मेडिसिन और बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट होता है
0: जी।
1: तो लोग प्रेफर करते हैं कि फिजियोथेरेपी से हम अपने आप को ठीक करें। बेसिकली इसके अंदर हर तरह के पेशेंट्स हैं। अगर हम बात करें, सबसे कॉमन है हमारे पास सबके नेक पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस
0: जी,
1: या फिर हम बात करें न्यूरोलॉजिकल केसेस, जैसे कि किसी को पैरालिसिस हुआ है, बच्चों के अंदर माइंड का डेवलपमेंट नहीं हुआ
0: जी।
1: स्पोर्ट्स फील्ड में हम बात करें, स्पोर्ट्स के अंदर हमारी स्पोर्ट्स की इंजरीज होती है उनके लिए होता है
0: जी।
1: ओल्ड एज होम में हम बात करें तो ओल्ड एज होम में जेरियाट्रिक फिजियोथेरेपी होती है। इसके अलावा अगर हम कॉरपोरेट सेक्टर में जाएं तो कॉरपोरेट सेक्टर में भी एक अलग सेक्शन होता है जहां पे फिजियोथेरेपी करा के जो नॉर्मल जो वर्कर्स हैं वहां पर उनको फिजिकली फिट रखता है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी का हर तरह की सर्जरी में, चाहे किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाओ, वहां पे आपको एक डिपार्टमेंट, वेल एस्टेब्लिश्ड डिपार्टमेंट मिलेगा
0: जी।
1: उस डिपार्टमेंट के का काम ये कि जिस टाइप की भी सर्जरी हुई है उस सर्जरी के बाद पेशेंट को रिहैबिलिटेट करना, उसको वापस चलाना, ये चीजें हमारे प्रोफेशन को बहुत अपग्रेड करती है। हमें हर चीज के अंदर इसकी जरूरत पड़ती है हमें
0: जी।
1: तो हर किसी को पता होता है कि हाँ, फिजियोथेरेपी एक प्रोफेशन है जो एक नॉबल प्रोफेशन है, अच्छा अर्निंग का भी प्रोफेशन है, कि हर कोई इस देख को अट्रैक्ट भी होता है कि हाँ ये चीज़ कैसे होती है। सबके मन में सवाल भी आते हैं कि हम इसको कैसे, हम इसको हम परस्यू करें, हम इस प्रोफेशन में कैसे आए।
0: सर, कई बार हमने भी देखा है कि जब किसी को दर्द की समस्याएं ज्यादा होती हैं तो जो क्लिनिक्स ऐसे हैं जहां पर फिजियोथेरेपी दी जाती है या ऐसे अस्पताल हैं, तो वहां पर भीड़ होती है, ज्यादातर दर्द से पीड़ित लोग वहां पर जाते हैं। हम इस बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले ये बताएं कि अगर कोई बच्चा, कोई व्यक्ति फिजियोथेरेपी को अपना करियर बनाना चाहता है, तो आपके यहां पर एडमिशन लेने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है, कितने साल तक की पढ़ाई होती है?
1: ये बेसिकली जो हमारा बेसिक है हमारे इसमें प्लस टू के अंदर यानी कि ट्वेल्थ के अंदर
0: जी,
1: जो स्टूडेंट है उसको सब्जेक्ट होना चाहिए PCBE यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। इसी साल से हमारे पास एक हमारी रेगुलेटरी बॉडी आई है NCHP, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट नीट के अंदर अपीयरेंस होनी उसकी बहुत जरूरी है।
0: अच्छा,
1: तभी उसका एडमिशन कॉलेज में हो पाएगा
0: जी।
1: टोटल जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 5 ईयर का है, 4 ईयर स्टडी पीरियड एंड 1 ईयर इंटर्नशिप पीरियड होता है
0: जी। यानी पांच साल बाद
1: वो वेल एस्टेब्लिश्ड फिजियोथेरेपिस्ट बनेगा
0: जी। सुभारती कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में क्या क्या सुविधाएं हैं, आप क्या बताना चाहेंगे बच्चों को?
1: अगर हम बात करें, हमारे पास वेस्टर्न यूपी के अंदर हमारे इस टाइम सबसे अच्छा टॉप का हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है
0: जी।
1: हमारा अपना एसोसिएटेड मेडिकल कॉलेज है जिसकी वजह से हम बच्चों को बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिलता है। हमारे पास लगभग 1300 बेडेड हॉस्पिटल है जिसमें हर तरह की सर्जरी होती है, हर तरह के पेशेंट बच्चों को देखने को मिलते हैं। और लगभग हमारी जो अपनी ओपीडी है वेस्टर्न यूपी में, लगभग इतनी बड़ी ओपीडी कहीं और नहीं है, इतनी वेल डेवलप्ड ओपीडी। हमारे पास इक्विपमेंट भी लेटेस्ट इक्विपमेंट है, कुछ और इक्विपमेंट अभी हमारे और आ रहे हैं इस साल से, हम इसको एडअप कर रहे हैं
0: जी।
1: इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो बच्चा अगर आता है तो उसे यूनिवर्सिटी का एक अच्छा अलग एनवायरनमेंट मिलता है, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है यूनिवर्सिटी का माहौल है, क्लास के अंदर वेल वेंटिलेटेड, सारे मॉडर्न इक्विपमेंट सारे के सारे हैं, ऑडियो विजुअल सारे इक्विपमेंट है हमारे, तो वो उस चीज़ से हम बच्चों को अच्छा एक्सपोजर देते हैं सारे
0: जी। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने सुना, सर ने बताया यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, तो सर अगर कोई, जैसे आपने प्रोसेस तो बताया कि बच्चे को किन किन पैमाने पर खरा उतरना पड़ेगा, क्या क्या एग्जाम और क्या क्या सब्जेक्ट उनके पास होने चाहिए, जो माँ बाप माता पिता इस वक्त कहीं दूर दराज हमारी बात सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि इस फील्ड के प्रति बच्चों को भी जागरूक करें? क्योंकि कई बार प्लस टू के टाइम पर बच्चे गलत सब्जेक्ट ले लेते हैं, बाद में उनको पता चलता है, तो शुरुआती में, पढ़ाई के शुरुआती दौर में ही बच्चों को या माता पिताओं को किन चीज़ों पर या सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए?
1: बच्चा जब टेंथ में होता है, जब तक उसका क्लियर होता है कि मुझे बायो ग्रुप में जाना है या फिर हमें मैथ में या कॉमर्स में या किसी भी कोई भी फील्ड उसको आर्ट लेनी है
0: जी।
1: अगर जिस बच्चे का मन है कि मुझे जो है डॉक्टर बनना है, मेडिकल फील्ड के अंदर जाना है
0: जी,
1: तो उसको शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए कि मुझे जो है बायो वाले ग्रुप जो है हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश और बायोलॉजी में, इस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें। नीट का एग्ज़ाम सबको पता होता है कि नीट का एग्ज़ाम नॉर्मली मई में होता है, एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए बच्चे तैयारी करते हैं उसमें, तो नीट के थ्रू ही हमारे से फिजियोथेरेपी कोर्स में उनको एंट्रेंस मिलेगी
0: जी।
1: इसके अंदर अब जब माँ बाप से मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाएं, वेल एस्टेब्लिश्ड क्लिनिक हर सिटी में है, हर बड़े हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट डेवलप हैं, वहाँ के जो सीनियर्स जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे मिलें, उनको देखें कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे उनकी लाइफस्टाइल है, अच्छी है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को हिसाब से तैयार करें, उनसे भी गाइडेंस लें
0: जी।
1: फिर कोशिश करें कि ऐसा अच्छा सा हमारा कॉलेज चूज़ करना है, तो हमारे पास वेस्टर्न यूपी में बात करें हमारा बेस्ट कॉलेज है इस टाइम
0: जी,
1: जो बच्चों माँ बाप के लिए बच्चों को यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए।
0: तो क्या कोई और बात, कोई और मैसेज आप देना चाहेंगे?
1: बेसिकली हमारे पास जो है, हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे हम लोग अपने यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस भी हम कराते हैं यहाँ पर, जिससे बच्चों को एक इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म मिलता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, या अदर जो एमिनेंट फैकल्टीज़ हैं हमारे फील्ड की उन लोगों से मुलाकात करने के लिए। इसके साथ साथ जहाँ पे हमारे यहाँ नेशनल लेवल के और इवन जो हमारे यहाँ AIU हमारे यहाँ गेम्स हुए हैं उनको होस्ट करने का हमारी यूनिवर्सिटी को मौका मिलता है, तो उसमें हम बच्चों को पोस्टिंग लगाते हैं तो उनको उस चीज़ का एक्सपोजर मिलता है। ये चीज़ें कहीं और इतनी नहीं है। यहाँ पर रेयर सर्जरीज होती हैं हार्ट की या फिर हमारे बोन्स जॉइंट्स की प्लेसमेंट की, जो कहीं और इतनी बहुत कम ही लोगों को देखने को मिलती हैं, तो इसीलिए वो बच्चों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि ये चीज़ें इसको यहाँ पे इनको इन चीज़ों का एक्सपोजर मिलेगा जो उनके आगे लाइफ में हेल्प करेगा। वो चाहे वो बच्चे अपने एकेडमिक फील्ड को चूज़ करें या तो हमारे यहाँ पे PhD कोर्स भी है, PhD में ज्वाइन करके कर सकते हैं, या फिर अपना एस्टेब्लिश क्लिनिक चला रहे हैं तो उसमें इनको बहुत हेल्प मिलेगी या किसी हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड है।
0: आपने बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर दी। दोस्तों चलिए यहीं पर हम सुभारती कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर हम उनसे भी बात कर लेते हैं।
2: जय हिंद, मेरा नाम अदीना है, मैं ज्योतिराव फूले सुभारती कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी की इंटर्न हूँ। मैंने अपनी BPT 2021 में शुरू करी थी और यहाँ पर मेरे 4.5 साल बहुत ही अच्छे गुजरे हैं। ज्योतिराव फूले सुभारती कॉलेज का फिजियोथेरेपी प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से डिजाइंड है। यहाँ पर हमें एकेडमिक और प्रैक्टिकल लर्निंग दोनों ही दी जाती है। ये प्रोग्राम ऐसे डिज़ाइन किया गया है जिसमें फर्स्ट 4 ईयर्स हमें एकेडमिक लर्निंग्स दी जाती है, जिसमें थर्ड और फोर्थ ईयर में ही हमारी पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है हॉस्पिटल में। हम इन पोस्टिंग्स के दौरान अपने इंटर्न्स, अपने सीनियर्स को देखकर सीखते हैं कि कैसे पेशेंट हैंडल करते हैं। नेक्स्ट 6 मंथ्स में हमारी इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप के दौरान हमें रियल पेशेंट एक्सपीरियंस दिया जाता है। रियल पेशेंट एक्सपीरियंस, रियल हैंड ऑन केयर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे कॉलेज के साथ एक 1100 बेडेड हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है, जिसमें हमें अलग अलग स्पेशलिटीज़ जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी में पोस्ट किया जाता है। यहाँ हमें दूसरे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के साथ एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर टीम में वर्क करना होता है, जिसमें हमें ऐसे काम करना होता है कि हमारे पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल केयर दी जाए। यूजुअली जो मेरे अदर फ्रेंड्स हैं जिनसे जो BPT परस्यू कर रहे हैं, मैंने उन्हें सुना है कि उनको इंटर्नशिप के लिए दूसरे हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, पर हमारे पास ये लिबर्टी है कि हमारा हॉस्पिटल साथ ही जुड़ा हुआ है और हमारा हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी है, जिससे हमें दूसरे सारी फील्ड एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। हमारे कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटी को बहुत सारी नेशनल इंटरनेशनल फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंसेस होस्ट करने का भी मौका मिला है, जो मेरे लिए पर्सनली बहुत ही ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी थी। रिसेंटली एक AIU कॉम्पिटिशन, शूटिंग कॉम्पिटिशन होस्ट हुआ था, उसमें मैंने एज अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट सर्व किया है, दिस इज अ वेरी गुड चांस जो मुझे यहाँ मिला बिकॉज आई वॉज इन द यूनिवर्सिटी. ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ज्योतिराव फूले सुभारती कॉलेज में बहुत ही अच्छा रहा है. ये मेरे लिए पर्सनली ग्रोइंग भी था और अकेडमिकली अकम्पलिशिंग भी था. मैं अपनी इस चॉइस से बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज चुना. थैंक यू सो मच. जय हिंद.
3: जय हिंद. मेरा नाम जैदुर रहमान है. मैं एक BPT इंटर्न स्टूडेंट हूँ ज्योतिराव फूले सुभारती कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में. हमारा 4.5 ईयर्स का कोर्स है. मैं 2021 बैच से ज्योतिराव फूले सुभारती कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में हूँ. फिलहाल हमारी इंटर्नशिप चल रही है छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल में जो यूनिवर्सिटी के अंदर ही इस्टेब्लिश्ड है, और हमें साथ ही मेडिकल कॉलेज का एक्सपोजर भी मिलता है जहाँ पर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स साइमल्टेनियसली फिजियोथेरेपी कॉलेज के प्रोफेसर के साथ मिलकर हमें ओवरऑल मेडिकल एंड फिजियोथेरेपी स्टडीज़ कराते हैं. जो मेडिकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो प्रोफेशनल मेडिकल डॉक्टर्स हमें पढ़ाते हैं, और जो फिजियोथेरेपी रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं वो वेल एजुकेटेड फिजियोथेरेपी प्रोफेसर्स हमें कराते हैं. फिजियोथेरेपी कोर्स स्टडी के साथ साथ हमारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी साइमल्टेनियसली चलता रहता है. बेसिक टू एडवांस टेक्निक्स हमें सभी सिखाई जाती हैं एक वेल प्रोफेशनल एनवायरनमेंट हमें सुभारती यूनिवर्सिटी ने दिया है. हमारा जो हॉस्पिटल है वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है. अप्रॉक्स 1300 बेडेड हॉस्पिटल है जिसमें ऑर्थो न्यूरो कार्डियो वार्ड्स अवेलेबल हैं और एक्सेट्रा. न्यूरो आईसीयूज़ में भी हमारी पोस्टिंग लगती है लाइक MICU, RICU, न्यूरो ICU एंड सो ऑन. फिजियोथेरेपी को प्रोफेशन को चूज़ करने के लिए ज्योतिराव फूले सुभारती कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में एकेडमिक एंड क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारी फैसिलिटी बेस्ट प्रोवाइड कराता है. हमें फर्दर डेवलपमेंट के लिए कॉन्फ्रेंसेस कराई जाती हैं इंटरनेशनल एंड नेशनल्स. वर्कशॉप्स रेगुलर बेसिस पे यूनिवर्सिटी के अंदर और यूनिवर्सिटी से बाहर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हमें प्रोवाइड्स कराई जाती हैं. हैंड ऑन प्रैक्टिस पेशेंट्स पर और साइमल्टेनियसली स्टूडेंट्स पर प्रैक्टिस करने के लिए अप्रोच किया जाता है. सारी फैकल्टी मेंबर्स हमारे क्लिनिकल हैंड्स और नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं.
0: तो दोस्तों अभी आपने देखा कि ज्योतिराव फूले सुभारती कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के बच्चों ने जो उनका एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर किया. सर चलते चलते मैं चाहता हूं कि आप क्या कहना चाहेंगे जरा हमारे श्रोताओं को, हमारे व्यूवर्स को, आपका कोई संदेश, कोई मैसेज.
1: मैं चलते चलते मैं ये बोलूँगा पेरेंट्स का और बच्चों से मैं ये बोलूँगा कि वो ये अब ये बहुत ही अपकमिंग प्रोफेशन है जो बहुत ज़्यादा है, लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है. आप लोग भी इस प्रोफेशन के बारे में जानें और अपना एक मन बनाएं कि हाँ हमें प्रोफेशन के रूप में फिजियोथेरेपी को एक चुनना है. इसके अंदर आप लोग अभी से प्रिपेयर करें बच्चों को कि वो नीट का एग्ज़ाम दें ताकि उनको एडमिशन आसानी से हो सके इसके.
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर दी. दोस्तों आपको ये जानकारी भरा कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा. फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे फिर. जय हिंद, नमस्कार.
4: ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM.

एक रोज जिंदगी के रूबरू आ बैठे। जिंदगी ने पूछा, दर्द क्या है, क्यों होता है, कहां होता है यह भी तो पता नहीं चलता। तन्हाई क्या है आखिर, कितने लोग तो हैं फिर तन्हा क्यों हो। मेरा चेहरा देखकर जिंदगी ने कहा, मैं तुम्हारी जुड़वा हूं, मुझसे नाराज ना हुआ करो।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: तुम्हारे बाल तो यार बड़े अच्छे हैं और हेयर स्टाइल तो कमाल का है, ऐसी कुछ लाइंस वो लोग कभी नहीं सुन पाते जिनके सिर पर बाल कम होते हैं या होते ही नहीं है।
3: मगर अब ऐसे लोग भी सुनेंगे अपने बालों की तारीफ डाविंसी क्लिनिक में आकर, जो कि है स्टेट ऑफ आर्ट सुपर स्पेशलिटी सेंटर फॉर हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, जहां पर डॉक्टर भानु प्रताप सिंह करेंगे आपके बालों का ट्रीटमेंट, जो कि है प्लास्टिक कॉस्मेटिक एवं बाल प्रत्यारोपण विशेषज्ञ।
4: नो पेन नो स्कार नो स्टिचेस, वर्ल्ड क्लास टेक्निक, नेचुरल एंड परमानेंट रिजल्ट्स, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लास्टिक सर्जन, सेटिस्फाइड पेशेंट्स इंक्लूडिंग सेलिब्रिटीज, मॉडल्स, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, टीचर्स। द विंसी क्लिनिक,
3: कॉन्टेक्ट नंबर 7055200128, एड्रेस 36 BSNL ऑफिस के सामने, तेजगढ़ी क्रॉसिंग, गढ़ रोड, मेरठ।
0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए, वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: तुम्हारे बाल तो यार बड़े अच्छे हैं और हेयर स्टाइल तो कमाल का है, ऐसी कुछ लाइंस वो लोग कभी नहीं सुन पाते जिनके सिर पर बाल कम होते हैं या होते ही नहीं है।
3: मगर अब ऐसे लोग भी सुनेंगे अपने बालों की तारीफ डाविंसी क्लिनिक में आकर, जो कि है स्टेट ऑफ आर्ट सुपर स्पेशलिटी सेंटर फॉर हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, जहां पर डॉक्टर भानु प्रताप सिंह करेंगे आपके बालों का ट्रीटमेंट, जो कि है प्लास्टिक कॉस्मेटिक एवं बाल प्रत्यारोपण विशेषज्ञ।
4: नो पेन, नो स्कार, नो स्टिचेस, वर्ल्ड क्लास टेक्निक, नेचुरल एंड परमानेंट रिजल्ट्स, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लास्टिक सर्जन, सेटिस्फाइड पेशेंट्स इंक्लूडिंग सेलिब्रिटीज, मॉडल्स, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, टीचर्स। डाविंसी क्लिनिक,
3: कॉन्टेक्ट नंबर 7055200128, एड्रेस 36 BSNL ऑफिस के सामने, तेजगढ़ी क्रॉसिंग, गढ़ रोड, मेरठ।
0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए, वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313.
5: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
6: नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका गर्ग SM हॉस्पिटल से। कुछ लोग हमें फोन करके ये जानकारी लेना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा सा दुविधा है मन में कि IVF से बच्चा हमारा अपना ही खून होगा कि नहीं होगा। ये अपने मन से आप ये शंका हटा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ही के स्पर्म और आप ही के एग्स को यूज किया जाता है एम्ब्रियो बनाने के लिए, आपके अपने ही गैमेट्स को यूज किया जाता है।
7: अब आपके आंगन में भी गूंजेगी बच्चों की गिलकारियां। संपर्क कीजिए ब्लेस फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, कट रोड, मेरठ। कॉन्टैक्ट 8650554433।
0: निसंतानता से पूरी तरह से छुटकारा, आइए ब्लेस फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, डॉक्टर अलका गर्ग जी के पास।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: अरे अंकल सुनिए जरा।
3: हाँ बेटा बोलो।
2: अंकल जी वो पापा की आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता। और आपने भी तो अभी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था, तो हमें भी कोई डॉक्टर सजेस्ट कर दीजिए।
4: बेटा तुम अपने पापा को लेकर डॉक्टर प्रियांग गर्ग के पास जाओ, जो मेरठ के नंबर 1 आँखों के डॉक्टर हैं, और मैंने भी अपनी आँखों का इलाज उन्हीं से कराया था।
5: डॉक्टर प्रियांगर, MBBS, MS, ऑप्थेल्मोलॉजी, FNV, VR सर्जन, FICO, लंदन, FAICO, FVRS, PDCR, रेटिना सर्जन एवं ROP स्पेशलिस्ट
6: विद मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो करते हैं रेटिना की सभी बीमारियों का इलाज। नवजात शिशु के रेटिना की जांच, एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन, और साथ ही में लेसिक लेजर द्वारा चश्मा हटवाएं।
5: फॉर कंसल्टेंसी You may visit Newtima Hospital, opposite LLRM Medical College, Garh Road, Meerut. You may contact 9837056192.
7: Dr. Priyank Garg, Newtima Eye Care. आओ अच्छा देखें।
8: तुम्हारे बाल तो यार बड़े अच्छे हैं और हेयर स्टाइल तो कमाल का है। ऐसे कुछ लाइंस वो लोग कभी नहीं सुन पाते जिनके सिर पर बाल कम होते हैं या होते ही नहीं हैं।
9: मगर अब ऐसे लोग भी सुनेंगे अपने बालों की तारीफ डाविंसी क्लिनिक में आकर, जो कि है स्टेट ऑफ आर्ट सुपर स्पेशलिटी सेंटर फॉर हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, जहां पर डॉक्टर भानु प्रताप सिंह करेंगे आपके बालों का ट्रीटमेंट, जो कि है प्लास्टिक कॉस्मेटिक एवं बाल प्रत्यारोपण विशेषज्ञ।
10: नो पेन नो स्कार नो स्टिचेस, वर्ल्ड क्लास टेक्निक, नेचुरल एंड परमानेंट रिजल्ट्स, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लास्टिक सर्जन, सेटिस्फाइड पेशेंट्स इंक्लूडिंग सेलिब्रिटीज, मॉडल्स, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, टीचर्स। डाविंसी क्लिनिक,
9: कॉन्टेक्ट नंबर 7055200128, एड्रेस 36 BSNL ऑफिस के सामने, तेजगढ़ी क्रॉसिंग, गर्ड रोड, मेरठ।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: अरे अंकल सुनिए जरा।
3: हाँ बेटा बोलो।
2: अंकल जी वो पापा की आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता। और आपने भी तो अभी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था, तो हमें भी कोई डॉक्टर सजेस्ट कर दीजिए।
4: बेटा तुम अपने पापा को लेकर डॉक्टर प्रियांग गर्ग के पास जाओ, जो मेरठ के नंबर वन आँखों के डॉक्टर हैं, और मैंने भी अपनी आँखों का इलाज उन्हीं से कराया था।
5: डॉक्टर प्रियांगर, MBBS, MS, ऑप्थल्मोलॉजी, FNB, VR सर्जन, FICO, लंदन, FAICO, FBRS, PDCR, रेटिना सर्जन एवं ROP स्पेशलिस्ट
6: विद मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो करते हैं रेटिना की सभी बीमारियों का इलाज। नवजात शिशु के रेटिना की जांच, एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन, और साथ ही में लेसिक लेजर द्वारा चश्मा हटवाएं।
5: फॉर कंसल्टेंसी you may visit Newtima Hospital, opposite LLRM Medical College, Gur Road, Meerut. You may contact 9837056192.
7: Dr. Priyank Garg, Newtima Eye Care. आओ अच्छा देखें।
8: तुम्हारे बाल तो यार बड़े अच्छे हैं और हेयर स्टाइल तो कमाल का है। ऐसी कुछ लाइंस वो लोग कभी नहीं सुन पाते जिनके सिर पर बाल कम होते हैं या होते ही नहीं हैं।
9: मगर अब ऐसे लोग भी सुनेंगे अपने बालों की तारीफ डाविंसी क्लिनिक में आकर, जो कि है स्टेट ऑफ आर्ट सुपर स्पेशलिटी सेंटर फॉर हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, जहां पर डॉक्टर भानु प्रताप

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: अरे अंकल सुनिए जरा।
3: हाँ बेटा बोलो।
2: अंकल जी वो पापा की आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता। और आपने भी तो अभी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था, तो हमें भी कोई डॉक्टर सजेस्ट कर दीजिए।
4: बेटा तुम अपने पापा को लेकर डॉक्टर प्रियांक गर्ग के पास जाओ, जो मेरठ के नंबर 1 आँखों के डॉक्टर हैं, और मैंने भी अपनी आँखों का इलाज उन्हीं से कराया था।
5: डॉक्टर प्रियांक गर्ग, MBBS, MS, ऑप्थल्मोलॉजी, FNB, VR सर्जन, FICO, लंदन, FAICO, FVRS, PDCR, रेटिना सर्जन एवं ROP स्पेशलिस्ट
6: विद मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो करते हैं रेटिना की सभी बीमारियों का इलाज। नवजात शिशु के रेटिना की जांच, एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन, और साथ ही में लेसिक लेजर द्वारा चश्मा हटवाएं।
5: फॉर कंसल्टेंसी यू मे विजिट न्यूटिमा हॉस्पिटल, ऑपोजिट LLRM मेडिकल कॉलेज, गढ़ रोड, मेरठ। यू मे कॉन्टेक्ट 9837056192।
7: डॉक्टर प्रियांक गर्ग, न्यूट्रिमा आई केयर, आओ अच्छा देखें।
8: तुम्हारे बाल तो यार बड़े अच्छे हैं और हेयर स्टाइल तो कमाल का है। ऐसे कुछ लाइंस वो लोग कभी नहीं सुन पाते जिनके सिर पर बाल कम होते हैं या होते ही नहीं है।
9: मगर अब ऐसे लोग भी सुनेंगे अपने बालों की तारीफ डाविंसी क्लिनिक में आकर, जो कि है स्टेट ऑफ आर्ट सुपर स्पेशलिटी सेंटर फॉर हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, जहां पर डॉक्टर भानु प्रताप सिंह करेंगे आपके बालों का ट्रीटमेंट, जो कि है प्लास्टिक कॉस्मेटिक एवं बाल प्रत्यारोपण विशेषज्ञ।
10: नो पेन नो स्कार नो स्टिचेस, वर्ल्ड क्लास टेक्निक, नेचुरल एंड परमानेंट रिजल्ट्स, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लास्टिक सर्जन, सेटिस्फाइड पेशेंट्स इंक्लूडिंग सेलिब्रिटीज, मॉडल्स, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, टीचर्स। द विंसी क्लिनिक,
9: कॉन्टेक्ट नंबर 7055200128, एड्रेस 36 BSNL ऑफिस के सामने, तेजगढ़ी क्रॉसिंग, गढ़ रोड, मेरठ।
0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
11: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
12: नमस्कार,
3: मैं डॉक्टर अलका गर्ग SM हॉस्पिटल से। कुछ लोग हमें फोन करके ये जानकारी लेना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा सा दुविधा है मन में कि IVF से बच्चा हमारा अपना ही खून होगा कि नहीं होगा। ये अपने मन से आप ये शंका हटा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ही के स्पर्म और आप ही के एग्स को यूज किया जाता है एम्ब्रियो बनाने के लिए, आपके अपने ही गैमेट्स को यूज किया जाता है।
12: अब आपके आंगन में भी गूंजेगी बच्चों की गिलकारियां। संपर्क कीजिए ब्लेस फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, कट रोड, मेरठ। कॉन्टैक्ट 8650554433।
13: निसंतानता से पूरी तरह से छुटकारा, आइए ब्लेस फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, डॉक्टर अलका गर्ग जी के पास।
14: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
15: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
14: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
16: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
17: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: ओम नमः क्रीम क्रीम कालिकाय स्वाहा।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: कौन के वो भगतनी मैया की दर पे पहुंच जाती है और वहाँ पे भगत जनों की जमघट को देख के इस वजन के द्वारा अपनी माँ को क्या प्रार्थना करती है और क्या

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यू ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: अरे अंकल सुनिए जरा।
3: हाँ बेटा बोलो।
2: अंकल जी वो पापा की आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता। और आपने भी तो अभी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था, तो हमें भी कोई डॉक्टर सजेस्ट कर दीजिए।
4: बेटा तुम अपने पापा को लेकर डॉक्टर प्रियांग गर्ग के पास जाओ, जो मेरठ के नंबर 1 आँखों के डॉक्टर हैं, और मैंने भी अपनी आँखों का इलाज उन्हीं से कराया था।
5: डॉक्टर प्रियांगर, MBBS, MS, ऑप्थल्मोलॉजी, FNB, VR सर्जन, FICO, लंदन, FAICO, FVRS, PDCR, रेटिना सर्जन एवं ROP स्पेशलिस्ट
6: विद मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो करते हैं रेटिना की सभी बीमारियों का इलाज। नवजात शिशु के रेटिना की जांच, एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन, और साथ ही में लेसिक लेजर द्वारा चश्मा हटवाएं।
5: फॉर कंसल्टेंसी You may visit Newtima Hospital, opposite LLRM Medical College, Garh Road, Meerut. You may contact 9837056192.
7: Dr. Priyank Garg, Newtima Eye Care. आओ अच्छा देखें।
8: तुम्हारे बाल तो यार बड़े अच्छे हैं और हेयर स्टाइल तो कमाल का है। ऐसी कुछ लाइंस वो लोग कभी नहीं सुन पाते जिनके सिर पर बाल कम होते हैं या होते ही नहीं हैं।
9: मगर अब ऐसे लोग भी सुनेंगे अपने बालों की तारीफ डाविंसी क्लिनिक में आकर, जो कि है स्टेट ऑफ आर्ट सुपर स्पेशलिटी सेंटर फॉर हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, जहां पर डॉक्टर भानु प्रताप सिंह करेंगे आपके बालों का ट्रीटमेंट, जो कि है प्लास्टिक कॉस्मेटिक एवं बाल प्रत्यारोपण विशेषज्ञ।
10: नो पेन नो स्कार नो स्टिचेस, वर्ल्ड क्लास टेक्निक, नेचुरल एंड परमानेंट रिजल्ट्स, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लास्टिक सर्जन, सेटिस्फाइड पेशेंट्स इंक्लूडिंग सेलिब्रिटीज, मॉडल्स, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, टीचर्स। डाविंसी क्लिनिक,
9: कॉन्टेक्ट नंबर 7055200128, एड्रेस 36 BSNL ऑफिस के सामने, तेजगढ़ी क्रॉसिंग, गर्ड रोड, मेरठ।
0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
11: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
12: नमस्कार,
3: मैं डॉक्टर अलका गर्ग SM हॉस्पिटल से। कुछ लोग हमें फोन करके ये जानकारी लेना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा सा दुविधा है मन में कि IVF से बच्चा हमारा अपना ही खून होगा कि नहीं होगा। ये अपने मन से आप ये शंका हटा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ही के स्पर्म और आप ही के एग्स को यूज किया जाता है एम्ब्रियो बनाने के लिए, आपके अपने ही गैमेट्स को यूज किया जाता है।
12: अब आपके आंगन में भी गूंजेगी बच्चों की गिलकारियां। संपर्क कीजिए ब्लेस्ड फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, कट रोड, मेरठ। कॉन्टैक्ट 8650554433।
13: निसंतानता से पूरी तरह से छुटकारा, आइए ब्लेस्ड फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, डॉक्टर अलका गर्ग जी के पास।
14: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किशोर में
15: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
14: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
16: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
13: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: आज के इस कलयुग की सच्चाई को इस गीत के माध्यम से आप सभी के बीच लेकर आया हूं और आशा करता हूं आप सुनेंगे और अमल करेंगे।

पहले के भाई राम लक्ष्मण जैसे होते थे, बड़े भाई छोटे भाइयों को अपने बेटों की तरह और छोटे भाई अपने बड़े भाइयों को पिता की तरह समझते थे। और आज इस कलयुग के भाई क्या करते हैं, सुनिए।

पहले श्रवण कुमार जैसे पुत्र अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पर रखकर चारों धाम की यात्रा करवाते थे, और आज इस कलयुग के पुत्र अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाते हैं। उन्हें अपने माता पिता को अपने साथ रखने में शर्म आती है।

जिस माँ ने रात रात भर जागकर और खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को अपने खून से सींचा, आज वही बच्चे उसे अपने साथ रखने में भी शर्माते हैं।

एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को कोख में रखती है, लेकिन एक पिता ता उम्र उस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए अपने दिमाग में रखता है, और वही बच्चे उस पिता के साथ क्या व्यवहार करते हैं, आइए सुनते हैं।

देखिए बीच बाग में लिए समाधि पेड़ा की छाया में नगर निवासी खड़े हुए थे ध्यान धरे पाया में मेरी मेहरबानों पूरनमल योगी के भेष में उस हजारी बाग में पहुंच गया कि जो हजारी बाग राजा श्यालभान का उस दिन सूख गया था कि जब पूरनमल कत्ल कराया गया था। मेहरबानों आज पूरनमल के पैर रखते ही वो बाग हरा भरा हो गया। साथियों बाग के हरे भरे होते ही सारे शहर में चर्चा हो गई, शोर शराबा हो गया और शहर इकट्ठा होकर उस बाग में आ गया। मेरे मेहरबानों राजा श्यालभान उस पूरनमल के योगी के भेष में जो बैठा हुआ था पैर छूने के लिए चल दिया। पूरनमल ने कहा, ओ बादशाह तू कलंकी है, तुझ में वो ताकत नहीं जो तू मेरे पैर छू सके। मैं तेरे जैसे कलंकी दागी राजा से पैर नहीं छुआऊंगा। मेरे मेहरबानों कांप जाते हैं श्यालभान, कहने लगे मैं कलंकी कैसे हूं। कहा पूरन ने, तुम कलंकी कलंकी हो, तुम्हारे एक औलाद थी जिसका नाम था पूरनमल, जिसको निर्दोष

0: वास्तु कृष्णा के साथ
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
2: राजा साल भान, तेरे भाग ने धोखा खाया है। तैने एक औरत के जाल में फंस के अपने धर्म न्याय और दया को ठुकरा दिया। मेरे मेहरबानों, कहन लग्या जिस रानी न्यूनादे ने जुल्म किया था और पूरण के ऊपर उस जुल्म को थोपा गया था, आज वो इस बात के अंदर पब्लिक में खड़ी हुई है। अगर झूठी बात है तो ये ही बता देगी, और आज भरी सभा के अंदर इस न्यूनादे से वो पिछला सारा हाल खुलवाया जाए, जिसे पब्लिक ये जान जाए, नगर की सारी जनता ये जान जाए कि पूर्ण मन को निर्दोष कटवाया था या न्यूनादे निर्दोषी थी। मेरे मेहरबानों, बस दहशत छा गई, क्यों सच्चाई के अंदर बड़ी शक्ति हुआ करती है। उसका मनोबल गिर गया, उसने सोचा जब इतना ही हाल खुल गया तो आगे क्या होगा, भला कैसे कहने लगी न्यूनादे रानी।

सज्जन सारा भेद रानी न्यूना दे ने उस भरी सभा के अंदर बाग में खोल दिया। दोषी मैं थी, वो पूर्ण मन दोषी नहीं था। सब कुछ मैंने किया था और उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया था। मैंने राजा सालभान को बहकाया। मेरे मेहरबानों देखिए, माई इंशिरादे जी पूर्ण की मां थी, अपने बेटे के बैराग में, बेटे के वियोग में अंधी हो चुकी थी। उसे दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसकी आत्मा ने ये आवाज दी, इंशिरा हो ना हो, आज उस बाग के अंदर तेरा बेटा पूर्णमल हो। क्यों? जिस दिन बाग सूखा था उस दिन तेरा बेटा कत्ल हुआ था, लेकिन आज हो सकता है वो वायदा करके गया था कि मां एक बार इस जीवन में तुझे दर्शन जरूर दूंगा। सोचने लगी, मेरा इकलौता पुत्र, मेरा भाग्य सितारा, मेरी आंख का तारा, मेरे जिगर का टुकड़ा कहीं वो पूर्णमल तो आ गया। मेहरबानों लड़ खड़ाती हुई किसी के सहारे बाग में आ जाती है। थोड़ा सा फासला था, माँ की दुद्धि से धार अपने बेटे पूर्णमल के मुंह पर पड़ती है। मेरी मेहरबानों रंग बदल गया, दहाड़ निकल जाती है माँ की। पूर्णमल मेरे बेटे तो इस दुनिया के अंदर जिंदा है और आज अपनी माँ को दर्शन देने के लिए आ गया है कहाँ, लेकिन मेरी आंखों से दिखना बंद है, तू दिखाई नहीं देता। जब वही दूध की धार मार डगराई, मेरे किस में छिप गया पूर्ण चांद सिपाही।

0: सारा नगर माँ और बेटे के प्यार को, तड़पते हुए प्यार को देख रहा था। दोस्तों, पूरनमल ने योग विद्याएं की थी, ग्रस्त जीवन, मोह माया सब कुछ त्याग दिया था और आज फिर अपनी माँ को छोड़ करके मेहमानों गायब हो गया। तो देखिए,
1: वास्तु कृष्णा के साथ
2: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: ये है मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यू ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: अरे अंकल सुनिए जरा।
3: हाँ बेटा बोलो।
2: अंकल जी वो पापा की आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता। और आपने भी तो अभी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था, तो हमें भी कोई डॉक्टर सजेस्ट कर दीजिए।
4: बेटा तुम अपने पापा को लेकर डॉक्टर प्रियांग गर्ग के पास जाओ, जो मेरठ के नंबर 1 आँखों के डॉक्टर हैं, और मैंने भी अपनी आँखों का इलाज उन्हीं से कराया था।
5: डॉक्टर प्रियांग गर्ग MBBS MS ऑप्थल्मोलॉजी FNB VR सर्जन FICO लंदन FAICO FVRS PDCR रेटिना सर्जन एवं ROP स्पेशलिस्ट
6: विद मोर देन 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो करते हैं रेटिना की सभी बीमारियों का इलाज। नवजात शिशु के रेटिना की जांच, एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन, और साथ ही में लेसिक लेजर द्वारा चश्मा हटवाएं।
5: फॉर कंसल्टेंसी यू मे विजिट न्यूटिमा हॉस्पिटल ऑपोजिट LLRM मेडिकल कॉलेज गढ़ रोड मेरठ। यू मे कॉन्टेक्ट 9837056192।
7: डॉक्टर प्रियांक गर्ग, न्यूट्रिमा आई केयर। आओ अच्छा देखें।
8: तुम्हारे बाल तो यार बड़े अच्छे हैं और हेयर स्टाइल तो कमाल का है। ऐसे कुछ लाइंस वो लोग कभी नहीं सुन पाते जिनके सिर पर बाल कम होते हैं या होते ही नहीं है।
9: मगर अब ऐसे लोग भी सुनेंगे अपने बालों की तारीफ डाविंसी क्लिनिक में आकर, जो कि है स्टेट ऑफ आर्ट सुपर स्पेशलिटी सेंटर फॉर हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, जहां पर डॉक्टर भानु प्रताप सिंह करेंगे आपके बालों का ट्रीटमेंट, जो कि है प्लास्टिक कॉस्मेटिक एवं बाल प्रत्यारोपण विशेषज्ञ।
10: नो पेन नो स्कार नो स्टिचेस, वर्ल्ड क्लास टेक्निक, नेचुरल एंड परमानेंट रिजल्ट्स, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लास्टिक सर्जन, सेटिस्फाइड पेशेंट्स इंक्लूडिंग सेलिब्रिटीज, मॉडल्स, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, टीचर्स। डाविंसी क्लिनिक।
9: कॉन्टेक्ट नंबर 7055200128। एड्रेस 36 BSNL ऑफिस के सामने, तेजगढ़ी क्रॉसिंग, गढ़ रोड मेरठ।
0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
11: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
12: नमस्कार,
3: मैं डॉक्टर अलका गर्ग SM हॉस्पिटल से। कुछ लोग हमें फोन करके ये जानकारी लेना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा सा दुविधा है मन में कि IVF से बच्चा हमारा अपना ही खून होगा कि नहीं होगा। ये अपने मन से आप ये शंका हटा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ही के स्पर्म और आप ही के एग्स को यूज किया जाता है एम्ब्रियो बनाने के लिए, आपके अपने ही गैमेट्स को यूज किया जाता है।
12: अब आपके आंगन में भी गूंजेगी बच्चों की गिलकारियां। संपर्क कीजिए ब्लेस्ट फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, कट रोड, मेरठ। कॉन्टैक्ट 8650554433।
13: निसंतानता से पूरी तरह से छुटकारा, आइए ब्लेस्ट फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, डॉक्टर अलका गर्ग जी के पास।
14: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
15: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
14: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
16: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
17: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
18: ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: ओ मेरी सासू की भर लाई पानी।
1: आज तक ऐसा हुआ है कि मैंने कोई बात कही हो और ना की हो।
2: ए सठानी नीर बुरन चलेगी
1: आज ना जाऊंगा ना गई तो पूरी बन ठंड कर जाऊंगी।
0: तेरे के न्यू जान में बिजली पड़े है तू किनारी जागी मैं चली जा।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: अरे बहन, कहाँ खोई हो और बहुत कमजोर भी लग रही हो, कोई परेशानी है क्या?
2: क्या बताऊँ बहन, तबीयत बहुत खराब रहती है। ऊपर से डॉक्टर कह रही थी कि बच्चे दानी का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
1: अरे तो तुम्हें तो डॉक्टर प्रियंका गर्ग से मिलना चाहिए।
2: अच्छा, डॉक्टर प्रियंका गर्ग, उत्तर प्रदेश की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका गर्ग, जो कि दूरबीन विधि से बच्चे दानी के सभी प्रकार के ऑपरेशन करने वाली मेरठ की पहली महिला डॉक्टर हैं। और तुम्हें पता है, इन्हें 20 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है।
3: डॉक्टर प्रियंका गर्ग, MBBS MS गोल्ड मेडलिस्ट, पीकॉक डिप्लोमा इन गायनो एंडोस्कोपी केल जर्मनी, एक्स एसोसिएट प्रोफेसर LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ, अपने 15 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ आपके लिए मेरठ में।
4: फॉर कंसल्टेंसी यू मे विजिट न्यूटिमा हॉस्पिटल ऑपोजिट LLRM मेडिकल कॉलेज गर्ग रोड मेरठ। यू मे कॉन्टेक्ट 9837056192।
1: अरे अंकल सुनिए जरा।
5: हाँ बेटा बोलो।
1: अंकल जी, वो पापा की आँखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता। और आपने भी तो अभी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था, तो हमें भी कोई डॉक्टर सजेस्ट कर दीजिए।
6: बेटा तुम अपने पापा को लेकर डॉक्टर प्रियंकर के पास जाओ, जो मेरठ के नंबर 1 आँखों के डॉक्टर हैं, और मैंने भी अपनी आँखों का इलाज उन्हीं से कराया था।
4: डॉक्टर प्रियंकर, MBBS MS ऑप्थल्मोलॉजी, FNB VR सर्जन, FICO लंदन, FAICO FVRS PDCR रेटिना सर्जन एवं ROP स्पेशलिस्ट
2: विद मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो करते हैं रेटिना की सभी बीमारियों का इलाज। नवजात शिशु के रेटिना की जांच, एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन, और साथ ही में लेसिक लेजर द्वारा चश्मा हटवाएं।
4: फॉर कंसल्टेंसी यू मे विजिट न्यूटिमा हॉस्पिटल ऑपोजिट LLRM मेडिकल कॉलेज गर्ग रोड मेरठ। यू मे कॉन्टेक्ट 9837056192।
7: डॉक्टर प्रियांक गर्ग, न्यूट्रिमा आई केयर, आओ अच्छा देखें।
8: तुम्हारे बाल तो यार बड़े अच्छे हैं और हेयर स्टाइल तो कमाल का है। ऐसी कुछ लाइंस वो लोग कभी नहीं सुन पाते जिनके सिर पर बाल कम होते हैं या होते ही नहीं है।
9: मगर अब ऐसे लोग भी सुनेंगे अपने बालों की तारीफ डाविंसी क्लिनिक में आकर, जो कि है स्टेट ऑफ आर्ट सुपर स्पेशलिटी सेंटर फॉर हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, जहां पर डॉक्टर भानु प्रताप सिंह करेंगे आपके बालों का ट्रीटमेंट, जो कि है प्लास्टिक कॉस्मेटिक एवं बाल प्रत्यारोपण विशेषज्ञ।
10: नो पेन नो स्कार नो स्टिचेस, वर्ल्ड क्लास टेक्निक, नेचुरल एंड परमानेंट रिजल्ट्स, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लास्टिक सर्जन, सेटिस्फाइड पेशेंट्स इंक्लूडिंग सेलिब्रिटीज, मॉडल्स, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, टीचर्स। डाविंसी क्लिनिक,
9: कॉन्टेक्ट नंबर 7055200128, एड्रेस 36 BSNL ऑफिस के सामने, तेजगढ़ी क्रॉसिंग, गर्ड रोड मेरठ।
11: नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका गर्ग SM हॉस्पिटल से। कुछ लोग हमें फोन करके ये जानकारी लेना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा सा दुविधा है मन में कि IVF से बच्चा हमारा अपना ही खून होगा कि नहीं होगा। ये अपने मन से आप ये शंका हटा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ही के स्पर्म और आप ही के एग्स को यूज किया जाता है एम्ब्रियो बनाने के लिए, तो आपके अपने ही गैमेट्स को यूज किया जाता है।
12: अब आपके आंगन में भी गूंजेगी बच्चों की गिलकारियां। संपर्क कीजिए ब्लेस्ट फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, कट रोड मेरठ। कॉन्टैक्ट 8650554433।
13: निसंतानता से पूरी तरह से छुटकारा, आइए ब्लेस्ट फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, डॉक्टर अलका गर्ग जी के पास।
0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल।
13: इनविटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

काबू सारे तो खुशी का राग दुनिया है भागम भाव हे बापू ये है जमाना तेरा हे बापू ये है जमाना तेरा हे बापू काले तो खुशी का राग दुनिया है भागम भाव हे बापू ये है जमाना तेरा हे बापू ये है जमाना तेरा

0: देखो तो बाबू प्यार से नहीं है खाली दुनिया,
1: नहीं है दर्द वाली गरज कीमत वाली दुनिया।
0: फिर भी देखो तो बाबू प्यार से नहीं है खाली दुनिया।
1: सुन प्यारे
0: कहो प्यारे मत वाले काले तू जी का राग दुनिया है भागम भाग। हे बाबू ये है जमाना तेरा, हे बाबू ये है जमाना तेरा, हे बाबू।

0: नहीं कुछ मुश्किल इतना लगा के दिल सुन ले, तेरा गुलजार है ये तेरी ही बहार कली सुन ले। ओ नहीं कुछ मुश्किल इतना लगा के दिल सुन ले, तेरा गुलजार है ये तेरी ही बहार कली सुन ले। सुन प्यारे कहो प्यारे मधुबाले
1: गाने तू खुशी का राग दुनिया है भगवान
2: ये है जमाना तेरा।

0: छेड़ के तराना है ये सारा ही जमाना तेरी महफिल।
1: अरे काहे तू गले है तेरे कदम गले है तेरी मंजिल।
0: छेड़ के तराना है ये सारा ही जमाना तेरी महफिल।
1: सुन प्यारे कहो प्यारे मत वादे
0: गाले तो खुशी का राग दुनिया है भागम भाग है बापू। ये है जमाना।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: अरे बहन, कहाँ खोई हो और बहुत कमजोर भी लग रही हो, कोई परेशानी है क्या?
2: क्या बताऊँ बहन, तबीयत बहुत खराब रहती है। ऊपर से डॉक्टर कह रही थी कि बच्चे दानी का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
1: अरे तो तुम्हें तो डॉक्टर प्रियंका गर्ग से मिलना चाहिए।
3: अच्छा, डॉक्टर प्रियंका गर्ग, उत्तर प्रदेश की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका गर्ग, जो कि दूरबीन विधि से बच्चे दानी के सभी प्रकार के ऑपरेशन करने वाली मेरठ की पहली महिला डॉक्टर हैं। और तुम्हें पता है, इन्हें 20 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है।
4: डॉक्टर प्रियंका गर्ग, MBBS MS गोल्ड मेडलिस्ट, पीकॉक डिप्लोमा इन गायनो एंडोस्कोपी केल जर्मनी, एक्स एसोसिएट प्रोफेसर LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ। अपने 15 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ आपके लिए मेरठ में।
5: फॉर कंसल्टेंसी यू मे विजिट न्यू टीमा हॉस्पिटल, ऑपोजिट LLRM मेडिकल कॉलेज, गर्ग रोड, मेरठ। यू मे कॉन्टेक्ट 9837056192।
1: अरे अंकल सुनिए जरा।
6: हाँ बेटा बोलो।
1: अंकल जी, वो पापा की आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता। और आपने भी तो अभी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था, तो हमें भी कोई डॉक्टर सजेस्ट कर दीजिए।
7: बेटा तुम अपने पापा को लेकर डॉक्टर प्रियंकर के पास जाओ, जो मेरठ के नंबर 1 आँखों के डॉक्टर हैं, और मैंने भी अपनी आँखों का इलाज उन्हीं से कराया था।
5: डॉक्टर प्रियंकर, MBBS MS ऑप्थल्मोलॉजी, FNB VR सर्जन, FICO लंदन, FAICO FVRS PDCR, रेटिना सर्जन ROP स्पेशलिस्ट
3: विद मोर देन 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो करते हैं रेटिना की सभी बीमारियों का इलाज। नवजात शिशु के रेटिना की जांच, एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन, और साथ ही में लेसिक लेजर द्वारा चश्मा हटवाएं।
5: फॉर कंसल्टेंसी यू मे विजिट न्यू टीमा हॉस्पिटल, ऑपोजिट LLRM मेडिकल कॉलेज, गर्ग रोड, मेरठ। यू मे कॉन्टेक्ट 9837056192।
8: डॉक्टर प्रियांक गर्ग, न्यू ट्रिमा आई केयर, आओ अच्छा देखें।
9: तुम्हारे बाल तो यार बड़े अच्छे हैं और हेयर स्टाइल तो कमाल का है। ऐसी कुछ लाइंस वो लोग कभी नहीं सुन पाते जिनके सिर पर बाल कम होते हैं या होते ही नहीं है।
10: मगर अब ऐसे लोग भी सुनेंगे अपने बालों की तारीफ डाविंसी क्लिनिक में आकर, जो कि है स्टेट ऑफ आर्ट सुपर स्पेशलिटी सेंटर फॉर हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, जहां पर डॉक्टर भानु प्रताप सिंह करेंगे आपके बालों का ट्रीटमेंट, जो कि है प्लास्टिक कॉस्मेटिक एवं बाल प्रत्यारोपण विशेषज्ञ।
11: नो पेन नो स्कार नो स्टिचेस, वर्ल्ड क्लास टेक्निक, नेचुरल एंड परमानेंट रिजल्ट्स, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लास्टिक सर्जन, सेटिस्फाइड पेशेंट्स इंक्लूडिंग सेलिब्रिटीज, मॉडल्स, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, टीचर्स। डाविंसी क्लिनिक,
10: कॉन्टेक्ट नंबर 7055200128, एड्रेस 36 BSNL ऑफिस के सामने, तेजगढ़ी क्रॉसिंग, गर्ड रोड, मेरठ।
12: नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका गर्ग, SM हॉस्पिटल से। कुछ लोग हमें फोन करके ये जानकारी लेना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा सा दुविधा है मन में कि IVF से बच्चा हमारा अपना ही खून होगा कि नहीं होगा। ये अपने मन से आप ये शंका हटा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ही के स्पर्म और आप ही के एग्स को यूज किया जाता है एम्ब्रियो बनाने के लिए, तो आपके अपने ही गैमेट्स को यूज किया जाता है।
13: अब आपके आंगन में भी गूंजेगी बच्चों की गिलकारियां। संपर्क कीजिए ब्लेस फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, कट रोड, मेरठ। कॉन्टैक्ट 8650554433।
0: निसंतानता से पूरी तरह से छुटकारा, आइए ब्लेस फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, डॉक्टर अलका गर्ग जी के पास।
14: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

बंटवारा कर ले, मिलजुल के जमाने में गुजारा कर ले, आधी तुम खा लो आधी हम खा ले, मिलजुल के जमाने में गुजारा।

0: की ये धूल बन सकती है फूल, ऐसा होता नहीं क्यों सोचो किसकी है भूल। मिल बैठो सारे भाई करो दिलों की सफाई, झाड़ू दिलों में लगाओ सारे झगड़े मिटाओ।
1: अरे मेरा चूल्हा तेरी दाल, ऐसे मिले सुरताल, दुख दुख का जीवन बंटवारा कर ले।
2: ओ मिलजुल के जमाने में गुजारा कर ले, आधी तुम खा लो आधी हम खा ले। मिलजुल के जमाने में गुजारा कर ले, तेरा गम मेरा गम यही गाते चले हम। सुख सुख का जीवन बंटवारा कर ले, ओ मिलजुल के जमाने में गुजारा कर ले।
3: ये है मेरठ का नंबर वन सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: तुझसे गुजारिश है, मुझसे दूर कहीं न जा, मेरी धड़कनों में बसी है तू।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ पंकज और आज अपने स्टूडियो में अकेला मौजूद नहीं हूं। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी स्पेशल गेस्ट, आप भाला फेंक पैरा एथलीट हैं एंड एलुमनाई हैं हमारे स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के, आप हैं पायल कश्यप। सबसे पहले पायल स्वागत है आपका,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो भाला फेंक की जर्नी के बारे में आपके बात करें उससे पहले, आप बीजेएमसी से भी जुड़े रहे हैं
1: जी।
0: पत्रकारिता पढ़ रहे थे और पत्रकारिता करते करते एथलीट बन गए, वो भी भाला फेंक एथलीट। कैसे ये सफर शुरू हुआ जानना चाहेंगे इसके बारे में आप
1: जी। बिल्कुल, देखिये मैं 2013 में मैंने सुभारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मैंने यही से किया है और मैंने यही से मैनेजमेंट से भी किया है, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म भी यही से किया है। 2015 में मुझे जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी सम्मानित किया था और अब इसी के अनुसार मुझे 2023 में माननीय योगी जी ने भी मुझे सम्मानित किया है। तो जैसे जैवलिन की बात अगर मैं करूं तो हमारे जो युवा हैं खेल की तरफ बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि जब नॉर्मल व्यक्ति या नॉर्मल युवा खेल सकते हैं तो हम लोगों के साथ भी ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी हमें मिले। तो मुझे हमारे जो कोच हैं आदरणीय जबर सिंह जी, तो उन्होंने सजेशन किया, हमारा उन्होंने पहले ट्रायल लिया था, ट्रायल लेने के बाद में तब उन्होंने लगा कि वास्तव में ये कर सकती हैं कुछ, तो उन्होंने मुझे प्रेरणा स्रोत मुझे बनाया अपने लिए। तो मैंने फिर किया, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल में मेरा गोल्ड आया, फिर वहां से चयन हुआ मेरा स्टेट लेवल के लिए। स्टेट लेवल पे मैंने 3 गोल्ड मेडल जीते थे और वहीं से फिर मैंने डोट की भी शुरुआत की, तो डोट में मेरा इंटरनेशनल मलेशिया के लिए चयन हुआ। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने जनपद शामली के जितने भी पैरा खिलाड़ी हैं उनके लिए प्रेरणा बनी हूँ। और मुझे ये भी, मैं उन दिव्यांगजनों से ये कहना चाहती हूँ जो ये सोचते हैं कि हम दिव्यांग हैं कुछ नहीं कर सकते, तो मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहूंगी, यदि आपके पास हौसला है, मन में जज्बा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरी बहुत छोटी सी जर्नी रही है ये और मैं बताना चाहूँ कि मेरे माता पिता नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरे माता पिता ने जो मेरे लिए सपना देखा था उसको मैं जरूर पूरा करूँ। तो इसलिए मैंने हर संघर्ष से लड़ते हुए आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ कि मैंने आज इंटरनेशनल के लिए मुझे चयन हुआ।

0: सिर्फ कागज का टुकड़ा भविष्य नहीं लिखता, आपके हाथों का हुनर लिखता है। कोई काम छोटा नहीं होता अगर उसे दिल से किया जाए। अपनी कला को पहचानिए, उसे तराशिए। हुनर है तो कद्र है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर आप। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।
1: हर वक्त तुम्हारे ही बारे में सोचता मेरा दिल है। नई राह है, नई मंजिल है।

0: अब आप सुनेंगे पैरा नेशनल एवं इंटरनेशनल खेलों में प्रतिभाग कर चुकी भाला फेंक एथलीट एवं स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी की जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की एलुमिनाई पायल कश्यप जी को आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आरजे पंकज के साथ। आप एक महिला एथलीट हैं और चुनौतियां तो सभी के साथ आती हैं, आपकी बात करें किस तरीके की चुनौतियां आपने फेस की हैं?
1: 2013 में मेरी जो माँ है वे एक्सपायर हो गई थी और 2018 में मेरे पिताजी भी एक्सपायर हो गए थे। तो पिता के जाने के बाद तो सीधी सी बात है, एक लड़की के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल तो माँ के बाद भी होता है, लेकिन पिता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बेटी को आगे बढ़ाते हैं वास्तव में, मतलब जो उनका सहारा बनते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब मुझे उनका हमेशा जो प्रेरणा होती थी पापा की कि बेटा आप दिव्यांग नहीं हो, आपके शरीर में एक पैर की थोड़ा प्रॉब्लम है, आप माइंड से दिव्यांग नहीं हो। और हमेशा कहा भी जाता है कि इंसान दिमाग से नहीं होता है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरे पापा का मेरे अंदर इतना जो कॉन्फिडेंस वो देखते हैं मुझ में, तो मुझे कुछ नया करना चाहिए। और मेरा हमेशा से यही रहा है कि मैं अपने पिता का सपना वो पूरा करूंगी जो उन्होंने मेरे लिए देखा था।
0: नहीं, कहीं ना कहीं आज वो आपको देखते होंगे तो बहुत खुश होते होंगे।

एक कमेंट, सिर्फ एक कमेंट किसी की पूरी हिम्मत तोड़ सकता है। स्क्रीन के पीछे छिपकर नफरत फैलाना आसान है, पर याद रखिए, आपके शब्द किसी का घाव बन सकते हैं। सोचिए फिर टाइप कीजिए। इंटरनेट को सुरक्षित बनाएं, नफरत नहीं प्यार फैलाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: अब आप सुनेंगे पैरा नेशनल एवं इंटरनेशनल खेलों में प्रतिभा कर चुकी भाला फेंक एथलीट एवं स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी की जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की एलुमिनाई पायल कश्यप जी को आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आरजे पंकज के साथ। पायल, आपने नेशनल भी खेला है, इंटरनेशनल भी खेला है, प्रेशर होता है, दोनों को ये प्रेशर में थोड़ा अंतर की बात करें, किस तरीके का प्रेशर आप देखते हैं, कम ज्यादा या जैसे भी समझे?
1: देखिए, जब हम नेशनल के लिए खेलते हैं तो हम सोचते हैं कि हम स्टेट के लिए चले गए, और जब इंटरनेशनल पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उस समय थोड़ा सा लगता है कि अगर हम प्रतिनिधित्व करके नहीं आ पाए, जीत कर नहीं आ पाए, तो थोड़ा सा लगेगा कि हमने कुछ छोड़ दिया है, तो इसलिए थोड़ा प्रेशर ज्यादा होता है।
0: भाला फेंक देखिए ताकत का गेम तो है, लेकिन टेक्निक भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप डेली ट्रेनिंग भी करनी होती होगी आपको और तमाम चीजें मैनेज करनी होती होंगी, कैसे आपका दिन का जो पूरा शेड्यूल है वो रहता है उसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: मॉर्निंग में थोड़ा 5 बजे मैं उठ जाती हूँ और सीधा मैं चली जाती हूँ वर्कआउट के लिए। 2 घंटे मैं सुबह की प्रैक्टिस करती हूँ, उसके बाद मैं कॉलेज के लिए जाती हूँ। कॉलेज से आने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद 4 से 6 बजे तक फिर मैं प्रैक्टिस करती हूँ।

0: नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका गर्ग SM हॉस्पिटल से। कुछ लोग हमें फोन करके ये जानकारी लेना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा सा दुविधा है मन में कि IVF से बच्चा हमारा अपना ही खून होगा कि नहीं होगा। ये अपने मन से आप ये शंका हटा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ही के स्पर्म और आप ही के एग्स को यूज किया जाता है एम्ब्रियो बनाने के लिए, आपके अपने ही गैमेट्स को यूज किया जाता है।
1: अब आपके आंगन में भी गूंजेगी बच्चों की गिलकारियां। संपर्क कीजिए ब्लेस फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, कट रोड, मेरठ। कॉन्टैक्ट 8650554433।
2: निसंतानता से पूरी तरह से छुटकारा, आइए ब्लेस फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, डॉक्टर अलका गर्ग जी के पास।

0: अब आप सुनेंगे पैरा नेशनल एवं इंटरनेशनल खेलों में प्रतिभाग कर चुकी भाला फेंक एथलीट एवं स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी की जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की एलुमिनाई पायल कश्यप जी को आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आरजे पंकज के साथ। आप जैसे महिला एथलीट हैं, अभी कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी हुई होंगी जो हमें सुन रही होंगी, तो क्या आप नया बदलाव उनके अंदर लाना चाहेंगी उनकी सोच में?
1: मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो दिव्यांग पैरा खिलाड़ियां हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को लगता है कि हमें कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है या कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, या फिर अगर हम खेलेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो मैं उनको यही कहना चाहूंगी, लोग तो आप कुछ नहीं करेंगे तब भी कहेंगे, करेंगे तब भी कहेंगे, तो इससे ज्यादा बेटर यही है कि आप कुछ करें तो कम से कम लोग कहेंगे कि वास्तव में कर दिखाया है।
0: क्या बात है।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

0: अब आप सुनेंगे पैरा नेशनल एवं इंटरनेशनल खेलों में प्रतिभाग कर चुकी भाला फेंक एथलीट एवं स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी की जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की एलुमिनाई पायल कश्यप जी को आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आरजे पंकज के साथ।
1: अच्छा, भाला फेंक आप एथलीट हैं, इसके फ्यूचर की बात करें या जो नए एथलीट अब आना चाहते हैं उनके लिए क्या टिप्स आपकी ओर से होंगी?
2: जी मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि वो जितना कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करें, क्योंकि भाला वास्तव में एक शक्ति वाला गेम है जिसमें हम अपने पूरे शरीर की शक्ति लगाकर उसको जीत पाते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितना ज्यादा हो सकता है

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: अब आप सुनेंगे पैरा नेशनल एवं इंटरनेशनल खेलों में प्रतिभा कर चुकी भाला फेंक एथलीट एवं स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी की जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की एलुमिनाई पायल कश्यप जी को आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आरजे पंकज के साथ। नेशनल भी हो चुका है, इंटरनेशनल भी हो चुका है, अब आगे के क्या टारगेट हैं?
1: जी, आगे का टारगेट यही है मेरा कि अब दोबारा से मैं अपने देश के लिए प्रतिनिधित्व करना चाहती हूँ और एथलेटिक्स इसके साथ साथ मैं वॉलीबॉल और डॉट की भी तैयारी कर रही हूँ, तो उसके लिए भी नेशनल के लिए चयन हुआ मध्य प्रदेश, हम फरवरी 2027 में जाने वाले हैं।
0: बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको उसके लिए एंड बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे साथ जुड़े और अपना अनुभव आपने साझा किया, कहीं ना कहीं हमारे सुनने वालों तक कुछ प्रेरणा पहुंची होंगी, महिलाओं तक, लड़कियों तक और तमाम युवाओं तक। चलते चलते एक संदेश जरूर आपसे लेना चाहेंगे हमारे युवाओं के लिए।
1: मैं सबके लिए यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी के मध्य ना जाए कि हम ये नहीं कर सकते तो लोग चार क्या कहेंगे। आप अपने ऊपर ध्यान रखिएगा, कॉन्फिडेंस रखिएगा, क्योंकि आप खुद पे हौसला रखोगे तभी आप जीत पाओगे।
0: क्या बात है, एंड बात बिल्कुल सही है कि बीच में ना जाए, किसी की बातों पर ना जाए। और कहते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अपने सपनों पे फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। आज की स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद थी पायल कश्यप, भाला फेंक पैरा एथलीट। बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसी के साथ हमारे जो तमाम श्रोता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास साफ सफाई बनाकर रखिए, पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली फैलाइए, पानी को बचाइए। घर से जब भी निकलते हैं और निकलते हैं टू व्हीलर से, प्लीज हेलमेट लगाया कीजिए। फोर व्हीलर से जाते हैं तो सीट बेल्ट लगाया कीजिए। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ। जय हिंद, जय भारत।

0: अरे अंकल सुनिए जरा।
1: हाँ बेटा बोलो।
0: अंकल जी वो पापा की आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता। और आपने भी तो अभी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था, तो हमें भी कोई डॉक्टर सजेस्ट कर दीजिए।
2: बेटा तुम अपने पापा को लेकर डॉक्टर प्रियांग गर्ग के पास जाओ, जो मेरठ के नंबर वन आँखों के डॉक्टर हैं, और मैंने भी अपनी आँखों का इलाज उन्हीं से कराया था।
3: डॉक्टर प्रियांगर, MBBS, MS, ऑप्थल्मोलॉजी, FNB, VR सर्जन, FICO, लंदन, FAICO, FVRS, PDCR, रेटिना सर्जन एवं ROP स्पेशलिस्ट
4: विद मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो करते हैं रेटिना की सभी बीमारियों का इलाज। नवजात शिशु के रेटिना की जांच, एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन, और साथ ही में लेसिक लेजर द्वारा चश्मा हटवाएं।
3: फॉर कंसल्टेंसी यू मे विजिट न्यूटिमा हॉस्पिटल, ऑपोजिट LLRM मेडिकल कॉलेज, गढ़ रोड, मेरठ। यू मे कॉन्टेक्ट 9837056192।
5: डॉक्टर प्रियांक गर्ग, न्यूट्रिमा आई केयर, आओ अच्छा देखें।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज, और अभी अपने स्टूडियो में बैठा हूं, एकदम लाइव आपसे मैं बातें कर रहा हूं। और चलिए अभी हम करते हैं हमारी आज की अच्छी वाली बात, जो ये कहती है, अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ बड़ा करने का सोच लिया है, तो उसके लिए आपको वो मेहनत नहीं करनी चाहिए जो आप पहले कर रहे थे, क्योंकि पहले जो आप मेहनत कर रहे थे वो आप उस चीज को पाने के लिए कर रहे थे जो आपके पास अभी है। लेकिन अब आपने अपनी ख्वाहिश बढ़ा दी है, अब आपको कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए मेहनत भी आपको ज्यादा करनी होगी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। सो, अगर कुछ बड़ा करने का सोच लिया है, कुछ अलग करने का सोच लिया है, तो वैसी ही अपनी मेहनत को करना शुरू कर दें, मतलब अपनी मेहनत को बढ़ा लें और ज्यादा बढ़ा लें, और डटकर मेहनत करें, और तब तक करें जब तक आपने जो सोचा है वो आपको मिल ना जाए। तो जी, ये तो हुई हमारी अच्छी वाली बात। ऐसी ही अच्छी वाली बात आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर जाकर। फिलहाल क्या करते हैं, एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, और उसके बाद आपसे मिलते हैं यहीं पर आपके अपने रेडियो स्टेशन पर, यानी कि आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

वो रेड लाइट सिर्फ 60 सेकंड की थी, लेकिन आपकी एक सेकंड की जल्दबाजी किसी का पूरी उम्र का इंतजार बन सकती है। हेलमेट और सीट बेल्ट बोझ नहीं, आपकी सुरक्षा कवच है। जिंदगी आपकी है, इसे सुरक्षित रखिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज, और आज का ये खास पॉडकास्ट उनके लिए है जो वकालत के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी खास अतिथि सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की डीन प्रोफेसर डॉक्टर रीना बिश्नोई मैम। मैम स्वागत है आपका।
1: पंकज जी थैंक यू और धन्यवाद, आपने मुझे आज इस अवसर पर बुलाया।
0: मैम हमारे सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में चल रहे कोर्सेज के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे।
1: सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी विधि के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है और उत्तर भारत में ये एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो BA LLB, LLM, LLM एग्जीक्यूटिव, PG डिप्लोमा, PhD और LLD प्रोग्राम को देता है।
0: मैम अब हम एलिजिबिलिटी के बारे में जानना चाहेंगे, कोई बच्चा आकर इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहता है तो क्या एलिजिबिलिटी है?
1: अगर हम यूजी कोर्स की बात करें दैट इज BA LLB, उसमें 10+2 आपका होना चाहिए और 45% एग्रीगेट होता है। उसमें हमारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है संस्था का, तो उसके माध्यम से वो प्रवेश ले सकता है BA LLB में। इसके अलावा PG डिप्लोमा का हमारा कोर्स है। PG डिप्लोमा हम लोग ह्यूमन राइट्स, लेबर लॉ, पेटेंट, IPR इन विषयों पे कराते हैं। इसमें किसी भी स्ट्रीम से जो ग्रेजुएट है, जो ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो इसमें प्रवेश ले सकता है और इस विषय पर अपने जो भी आप ह्यूमन राइट्स हैं, पेटेंट हैं, उस पर आप अपना डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं।
0: मैम कितने टाइम ड्यूरेशन के सभी कोर्सेज हैं, यूजी के भी और पीजी के भी?
1: हमारा जो BA LLB का कोर्स है ये 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है, 5 वर्षीय पाठ्यक्रम है। जो हमारा PG डिप्लोमा का कोर्स है वो 1 वर्ष का कार्यक्रम है। इसके अलावा हमारे संस्थान में मास्टर्स में LLM है। LLM जो 2 ईयर्स कोर्स है वो रेगुलर कोर्स है और उसमें हम ड्यूअल स्पेशलाइजेशन देते हैं। और जो हमारे यहाँ 4 स्पेशलाइजेशन है हमारे संस्थान में, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड द कॉर्पोरेट लॉ। इन 4 स्पेशलाइजेशन में विद्यार्थी जो है अपने इंटरेस्ट से कोई भी 2 स्पेशलाइजेशन चूज कर सकता है और हम लोग ड्यूअल स्पेशलाइजेशन की डिग्री मास्टर्स में देते हैं। इसके अलावा हमारे पास मास्टर्स में LLM एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है। दोज हु आर प्रोफेशनल, जो लोग जॉब में हैं और मास्टर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा LLM एग्जीक्यूटिव का प्रोग्राम है। ये 3 वर्षीय प्रोग्राम है।
0: मैम आपने इन तमाम कोर्सेज के बारे में बताया और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्कॉलरशिप पर एडमिशन खोजते हैं, तो क्या हमारे यहाँ स्कॉलरशिप पर भी?
1: हमारा संस्थान डिफरेंट स्कॉलरशिप देता है, मेरिटोरियस स्कॉलरशिप देता है। उसमें एक क्राइटेरिया बना है, 9200 पे आपका यूजी अगर आप करना चाहते हैं, BA LLB करना चाहते हैं, तो वहाँ पे 50% आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ऐसे ही वो सारी ट्यूशन फीस पे एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा मास्टर्स में भी यही व्यवस्था है और उसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप 9200% का एक पूरा बॉक्सेस बने हुए 9200 और 80.9%, तो वहाँ पर बच्चों को सुविधा स्कॉलरशिप की अवेलेबल है। इन स्कॉलरशिप के अलावा भी हमारे यहाँ गर्ल्स स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा जो एलुमिनाई है उनके लिए स्कॉलरशिप है, आर्मी पर्सोनल के लिए स्कॉलरशिप है, साथ ही साथ जो मार्टियर्स हैं, उनके डिपेंडेंट हैं, उनके लिए भी हमारी संस्था जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है।
0: मैम यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात करें तो किस तरह का स्टूडेंट को यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है?
1: पंकज जी मैं आपको बताऊं कि हमारी जो संस्था है, हमारा जो सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है, वो केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं है और हम लोग जो है लर्निंग बाय डूइंग यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर के थ्रू बच्चों को सिखाते हैं। और हमारा संस्थान कंटिन्यूस बच्चों को जो एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है उसको फॉलो करते हुए उनको मोट कोर्ट कॉम्पिटिशन कराता है, उनको क्लाइंट काउंसलिंग सिखाता है, जजमेंट राइटिंग कराता है, कोर्ट विजिट, जेल विजिट, लोक अदालत विजिट, ये सब कराता है। इसके साथ ही साथ हमारे संस्था में जो एजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, एक हमारा फ्री लीगल एड क्लिनिक है जहां पर बच्चे जो है क्लिनिकल सारे एस्पेक्ट सीखते हैं और फ्री लीगल एजुकेशन, वहां फ्री लीगल एड उनको प्रोवाइड कराई जाती है। दोज हु आर रिक्वायर्ड द फ्री लीगल एड, जिनको विधिक सहायता की आवश्यकता होती है, वो हमारे यहाँ आकर निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करते हैं और ये 24/7 हमारे यहाँ चलता है संस्थान में। तो हमारे जो बच्चे हैं वो क्लासरूम तक सीमित नहीं है, वो फील्ड में जाके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीख सकते हैं, जिससे कि वो रियल वर्ल्ड में एंटर करने से पहले, प्रोफेशनलिज्म में एंटर करने से पहले वो सारी विधा सीख जाते हैं कि उन्हें किस तरह से आगे डील करना होगा।
0: मैम करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, जो भी कोर्सेज आपने बताया यूजी के हैं या पीजी के हैं, तो आगे करियर में वो क्या क्या कर सकते हैं?
1: पंकज जी विधि के क्षेत्र में जो स्कोप है वो बहुत ही वाइड है। आप BA LLB का कोर्स करने के बाद आप लिटिगेशन में जा सकते हैं, आप डिफरेंट लॉ फर्म को ज्वाइन कर सकते, सकते हैं, आप अपनी लॉ फर्म बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करें तो आप जुडिशरी के एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं, आप आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, बैंक के क्षेत्र में कर सकते हैं, क्योंकि आजकल विधि के क्षेत्र जो ऐसा है कि हर डिपार्टमेंट में विधिक जो एक्सपर्ट्स हैं, लॉ एक्सपर्ट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर बीएलएलबी के बाद आपके पास एक बहुत बड़ा स्कोप है और आप कुछ भी, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी है, आजकल फैशन लॉ, एंटरटेनमेंट लॉ, स्पोर्ट्स लॉ, बहुत सारी ऐसी फील्ड है जहां पर बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनके पास बहुत सारा स्कोप है। साथ ही साथ अगर हम मास्टर्स की बात करें तो बच्चा बीएलएलबी करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद जब मास्टर्स करता है, एलएलएम करता है, तो एलएलएम करने के बाद उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि वो एकेडमिक्स में जा सकता है, वो यूजीसी नेट क्लियर कर सकता है, पीएचडी कर सकता है, रिसर्च को ऑप्ट कर सकता है। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो एलएलएम फर्स्ट ईयर करने के बाद, मास्टर्स का पहला साल करने के बाद ही यूजीसी नेट क्लियर कर रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा संकेत है हम लोगों के लिए, क्योंकि वहां पर इन लेटर और रिस्पेक्ट हम फॉलो करते हैं कि 75% अटेंडेंस है तो वो उसको बच्चा करता है और उसका रिजल्ट हमें मिलता है, उसका आउटकम हमें मिलता है।
0: मैं वैसे तो हम लगभग सभी बातें इस पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी जिन भी बच्चों तक ये हमारा पॉडकास्ट पहुंच रहा है और आगे जुडिशरी के क्षेत्र में या आगे वकालत के क्षेत्र में अपना करियर जो बच्चे देखते हैं, इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनके पास अगर थोड़ी सी क्वेरी अभी बच जाती है तो क्या रास्ता है, किस तरीके से वो कॉलेज जा सकते हैं, एड्रेस क्या है?
1: हमारा जो प्रमुख संस्थान है ये NH 58 पर एस्टैब्लिश है, आप कभी भी आकर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आकर हमसे क्वेरी कर सकते हैं।
0: तो अभी अभी आपने सुना सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की डीन प्रोफेसर डॉक्टर रीना बिश्नोई मैम को, और उम्मीद है तमाम बातें आपको समझ में आई होंगी। एंड अब आपको ये चुनना है कि अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको आगे क्या करना है, अगर आप लॉ के क्षेत्र में आना चाहते हैं और पीजी आपको करना है तो आपको क्या करना है, वो आप समझ सकते हैं। बाकी अभी हम सुनने जा रहे हैं उन बच्चों को जो सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उन्हें।
2: जय हिंद, मेरा नाम सृष्टि सिरोही है और मैं बीएलबी थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। मैं आज आपके साथ सुभारती से जुड़े अनुभव साझा करूंगी। जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया था तो लगा 12th के बाद क्लास टीचर ने जो सपोर्ट किया, ऐसा सपोर्ट कहाँ ही मिलेगा किसी कॉलेज में, पर यहाँ का मेंटर मेंटी सिस्टम एक स्ट्रेंथ बना और साथ ही ऐसी गाइडेंस दी कि जो आज तक इतना सपोर्ट करती है कि जब भी कोई जरूरत पड़े तो सिर्फ उनसे संपर्क साध लिया जाए तो वे हर मुश्किल हल कर देते हैं। दूसरा, यहाँ की लाइब्रेरी जो हर प्रकार के सब्सक्रिप्शन और साथ ही जर्नल्स और न्यूज़पेपर और छोटी से बड़ी बुक्स हमें प्रोवाइड करती हैं। सुभारती के अगर ब्लॉक्स में घूमो या कैंपस को विजिट करो तो देखोगे कर्नल लक्ष्मी सहगल से लेकर झलकारी देवी, जिनके नाम इतिहास में छुपे रह गए, जो सुभारती यूनिवर्सिटी ने अपने आंगन में उन्हें जगा दी और साथ ही उनका नाम अमर कर दिया। सुभारती यूनिवर्सिटी के 4 क्लब, कल्चरल, लिटरेरी, इनोवेशन और स्पोर्ट्स क्लब, बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं उनके इंटरेस्ट से जुड़ी चीजों में पार्टिसिपेट करने के लिए। और साथ ही सबसे अच्छा, सुभारती के टीचर्स जो हमें हमारे फ्रेंड्स और साथ ही गुरु दोनों प्रतीत होते हैं। और इसी के साथ मैं बोलना चाहूंगी, सुभारती सिर्फ करियर ही नहीं बनाता, यह एक चरित्र का निर्माण करता है। धन्यवाद।
3: जय हिंद, मैं ओम ठाकुर, विधि संकाय के चतुर्वर्ष का छात्र। जब सुभारती के अंदर मैं अपने अनुभव की बात करता हूँ तो मुझे अपने 5 साल के जर्नी का वो पहला साल याद आता है। घर से इतनी दूर, मन में हजारों शंकाएं, परंतु यहाँ के माहौल ने उन सभी शंकाओं को क्षण भर में दूर कर दिया। बात अगर एकेडमिक्स की करूँ तो मैं सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, अंग्रेजी में हाथ जरा तंग थी। न केवल मैं, मेरे घर वाले भी परेशान थे कि आखिर कैसे मैं इन चीजों को मैनेज कर पाऊंगा। मगर कॉलेज और टीचर्स का जो सपोर्ट मुझे और मेरे जैसे अन्य बच्चों को मिला, मैं आज ये कह सकता हूँ कि अब लैंग्वेज हमारे एकेडमिक्स में बैरियर नहीं रहा। साथ ही मूड कोट एक्सरसाइज, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस समय समय पर होते रहते हैं, जिनकी मदद से हम लॉ को ना केवल किताबों में बल्कि उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से समझते हैं। अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात करूं तो यूथ पार्लियामेंट्स, डिबेट्स और अन्य कल्चरल एक्टिविटीज के माध्यम से सुभारती अवसरों का भंडार है। और यही कारण है कि मेरे जैसा एक छात्र जिसने 12वीं तक कभी माइक भी नहीं पकड़ी थी, वह आज राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ना केवल प्रतिभाग कर रहा है बल्कि मैंने कई प्रतियोगिताएं जीती भी है। और मेरे जैसे हजारों छात्र हैं जो अलग अलग मंचों पर और सुभारती का नाम रोशन कर रहे हैं। कहते हैं अ जर्नी विच वेल बिगन इज ऑलमोस्ट हाफ डन। जिस दिन मैंने सुभारती को चुना, विधि क्षेत्र के इस जर्नी का वह शुरुआत था जिसने मेरे सफर को आधा तय कर दिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता का मूल मंत्र जो मैं आज यहाँ से लेकर जाऊंगा, वो बचे खुचे मुसीबतों से भी मुझे विजय प्राप्त करवाएगा। अंत में बस इतना ही कहूंगा, प्राउड टू बी सुभारतीयन।
0: तो अभी अभी आपने उन छात्रों को सुना जो यहाँ पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में। बाकी मैम बहुत बहुत धन्यवाद आज आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा की। चलते चलते एक मैसेज हम जरूर आपसे लेना चाहेंगे उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए जिन तक हमारा ये पॉडकास्ट पहुंच रहा है।
1: मैं अब एक केवल यही वाक्य कहना चाहूंगी बच्चों से कि आप अपने करियर पे फोकस करें, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आप धीरे धीरे अपने जो भी आपने क्षेत्र चुना है उसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ें, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप अपना टारगेट सेट करें एंड हिट द टारगेट, तभी आप जो है अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे। और शिक्षा का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, ये बात आपने माइंड में बिठा लीजिए कि शिक्षा का उद्देश्य आपको सेवाएं देना है। सेवाएं किसको देना है? राष्ट्र को देना है। बिकॉज हम किस पे बिलीव करते हैं? राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। विद दीज वर्ड, जय हिंद जय भारत।
0: बिल्कुल बात सही है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। एंड उम्मीद है आज का ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। हम जल्द ही मिलेंगे किसी नए अतिथि के साथ, तब तक मैं भी कुछ बातें आपसे कहकर जाता हूँ हमेशा की तरह कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली फैलाइए, पानी को बचाइए। घर से जब भी निकलते हैं और निकलते हैं टू व्हीलर से, प्लीज हेलमेट लगाया कीजिए, और फोर व्हीलर से जाते हैं तो सीट बेल्ट लगाया कीजिए। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही जुड़े रहिए आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के साथ। जय हिंद जय भारत।

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
1: ये सिर्फ एक बूंद नहीं है, ये कल की प्यास है। अगर आज हम इसे नहीं रोक पाए तो कल मांगने से भी नहीं मिलेगा। पानी बचाएं, भविष्य सजाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।
2: तेरी याद आती है रात भर, तेरा असर इस कदर है कि फिरता हूँ दर बदर।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शे पंकज, और अभी एक ऐसी बात आपको मैं बताने वाला हूं जो आपके काफी काम की हो सकती है। आप इसे सुनने के बाद यही कहने वाले हैं कि अरे ये तो हमारी कभी कभी प्रॉब्लम बड़ी वाली हो जाती है, जिसे आपने बड़े छोटे और आसान शब्दों में हमें समझा दिया और हमें बात समझ में आ गई, अब हम इस ट्रिक को इस्तेमाल करने वाले हैं। ये जो बात है ये बात रिलेट करती है आपके मोबाइल फोन की बैटरी से। यस, सही सुना आपने, मोबाइल फोन की बैटरी की मैं बात कर रहा हूँ। अक्सर क्या होता है कि हम जल्दी में होते हैं या ट्रैवल करना होता है हमें कहीं पर, तो हमारे मोबाइल फोन की बैटरी जो है डाउन होती है और हमें उसे तुरंत चार्ज करना होता है। हमें अगर किसी को अर्जेंट कॉल मिलाना हो और उस समय बैटरी डाउन हो जाए तो हम कैसे काम करें, एंड बैटरी डाउन में तो मतलब प्रॉब्लम हो ही जाती है। अगर आपको जल्दी कहीं पर जाना है और फटाफट से अपने मोबाइल फोन को चार्ज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन को एयरप्लेन मोड पर लगा सकते हैं, और एयरप्लेन मोड पर लगाने से आपका जो मोबाइल फोन है वो जल्दी चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जितना वो रेगुलर टाइम में चार्ज होता है उस टाइम से जल्दी चार्ज हो जाएगा। आप चाहें तो ये

ट्रिक इस्तेमाल करके देख सकते हैं। और हाँ, काम अगर ये ट्रिक करे तो थैंक यू जरूर बोलिएगा यार, हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर जाकर। फिलहाल हमें ऐप पर भी सुनते रहिए ऐसे ही, और हाँ हमारी फ्रिक्वेंसी पर भी सुनते रहिए, एंड जाइए कहीं मत, क्योंकि आपका अपना पेंदास आरजे पंकज लौट कर आएगा थोड़ी ही देर में। तब तक आप इंजॉय कीजिए कुछ अपकमिंग गाने।

एक गलत क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई गायब। सतर्क रहिए, अपना OTP और पासवर्ड किसी को ना दें। आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है। डिजिटल बनो पर सावधानी के साथ। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।
1: Mixing in the house.

हर फॉरवर्ड मैसेज सच नहीं होता। बिन सोचे समझे कोई भी खबर शेयर ना करें, ये किसी की मुश्किल बढ़ा सकता है। पहले जांचिए फिर मानिए। अफवाहों पर लगाम लगा के एक अच्छे भारतीय नागरिक बने, इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज। और इस वक्त अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कपिल, डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी। सर, स्वागत है आपका।
1: जय हिंद एंड थैंक यू। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज आपके साथ में जो है इस पॉडकास्ट में बैठा हूं और अपने फैकल्टीज और अपने स्टूडेंट्स के बारे में कुछ अच्छा यहां बता पाऊंगा।
0: सर, सबसे पहले आपके विजन के बारे में एंड आपके डिपार्टमेंट के बारे में जानना चाहेंगे।
1: जो हमारी विश्वविद्यालय है, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, उसकी कुछ कोर वैल्यूज हैं, जैसे शिक्षा, सेवा, संस्कार एवं राष्ट्रीयता। तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी वो सारी भावनाएं, सारी वैल्यूज जो है वो दिखती हैं, और बच्चों को इंजीनियरिंग के साथ में हमारी कल्चरल वैल्यूज को सिखाया जाता है, उनको संस्कार सिखाए जाते हैं, उनको सोसाइटी में भविष्य में इंटरमिंगल होना है वो चीज सिखाई जाती है। तो इन्हीं सभी चीजों के साथ में हम तकनीकी जो शिक्षा है उसको हम बच्चों तक पहुंचाते हैं, बच्चे उसको ग्रहण कर और देश के मूल्यवान नागरिक बनकर समर्पित होते हैं। और इसी क्रम में बच्चों के साथ में हमारी फैकल्टी भी, हम हर साल उनके लिए कुछ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करते हैं, और उन प्रोग्राम्स को करवाने के लिए जो इंडस्ट्री से लोगों को बुलाते हैं, इंडस्ट्री के लोग आते हैं, और जो इंडस्ट्री में उस टाइम पर जो चीजें चल रही होती हैं वो हमारे वो शिक्षकों को उनके ऊपर ट्रेन करते हैं, जिससे कि इंडस्ट्री में जो चल रहा है और जो एकेडमिक्स है उसके बीच में कोई गैप ना रहे, कोई अंतर ना रहे। और देखा जाए तो हमारे पास में अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल में अधिकतर सभी ब्रांचेस हैं। हम अगर शुरुआत करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, तो हमारे साथ में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी कई सारे कंसंट्रेशन हैं, जैसे कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग है पहला, दूसरा है बिग डेटा एनालिटिक्स, तीसरा है क्लाउड कंप्यूटिंग, चौथा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये कंप्यूटर साइंस के कंसंट्रेशन हैं। इसके साथ में हमारे पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, हमारे पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, फूड टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, मतलब एविएशन में हमारे पास में कोर्सेज हैं, हमारे पास डिफेंस में कोर्सेज हैं, हमारे पास मास्टर्स में अधिकतर सारे कंसंट्रेशन हैं, वो चाहे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हो मास्टर्स, चाहे कंप्यूटर साइंस में, अधिकतर सभी ब्रांचेस में स्पेशलाइजेशन में हमारे पास में कोर्सेज हैं। तो ये सब चीजें संगठित करती हैं एक अच्छी शिक्षा पद्धति को, और जो बच्चे उसको ग्रहण करते हैं और जिस चीज में उनकी रुचि होती है उसी में वो अपने आप को एडमिशन लेकर उस चीज के ऊपर आगे बढ़ते हैं। हमने कई सारे इनिशिएटिव्स जो है वो स्टार्ट किए हैं, जिसमें अभी हमने फिलहाल हमारी जो काउंसिल है, टेक्निकल काउंसिल है, जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उससे हमने AICT आइडिया लैब जो होती है उसके लिए हमने ग्रांट लिया है, हमें AICT ने अप्रूवल दिया है, और उसके ऊपर हमने कई करोड़ रुपए लगा के हमारी एक आइडिया लैब तैयार हुई है, जिसके अंदर सभी मशीनें बिल्कुल नए स्तर की है, बिल्कुल जो मार्केट में ट्रेंडिंग है टेक्नोलॉजी उसके ऊपर बेस्ड है। बच्चे उस AICT आइडिया लैब में जाकर जो मार्केट में रिक्वायर्ड स्किल्ड है उनको डेवलप करते हैं। अभी हमने फिलहाल में ही अगर देखा जाए तो हमने एक अन्वेषण इवेंट होता है जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज करवाती है, उस अन्वेषण के अंदर हमारे बच्चों ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर देखा जाए तो नॉर्थ रीजन में हमारे बच्चों ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है, और उसके अंदर 30 यूनिवर्सिटीज आई थी, 30 यूनिवर्सिटीज में हमारे बच्चों ने कॉम्पीट करके फर्स्ट रैंक लेके आना, वो जो हमारे प्रयोग है, हमारे प्रयास है, चाहे वो AICT आइडिया लैब है या और बच्चों के लिए टीचर्स के लिए जो रिसर्च फैसिलिटीज हमने यहाँ डेवलप की है, उसके अंदर बच्चे जाके टीचर्स जाके जो काम कर

0: करते हैं उसी का कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्शन है।
1: सर, डिपार्टमेंट में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो फैकल्टीज हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
0: जहां तक बात आती है हमारी फैकल्टीज की, तो फैकल्टीज हमारी इस टाइम पर बड़ी अच्छी है। मैं कहूंगा कि अनपैरेलल मैच है। आप इस पूरी बेल्ट में देखेंगे तो जो शानदार सेट हमारे पास में है फैकल्टीज का, वो शायद ही किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलता हो। अधिकतर सारी फैकल्टीज हमारे पास में वो पीएचडी होल्डर्स हैं और आईआईटी से ग्रेजुएट हैं, एनआईटी से ग्रेजुएट हैं। वो बच्चों के साथ में जो अच्छी स्किल्स हैं उनके ऊपर ट्रेनिंग देती हैं। और जहां तक बात है बच्चों को, हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कराते हैं। बच्चे जो हमारे साथ में पढ़ रहे होते हैं तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जब बच्चा इंजीनियरिंग करता है तो उसके बाद में उसको गेट की तैयारी हम कराते हैं। जितनी भी पब्लिक सेक्टर्स में नौकरी निकलती है उसमें बच्चे एलिजिबल होते हैं गेट क्वालिफाई करके। तो वो सब करने के बाद में बच्चा जो है, जब यहाँ पर तैयारी उसको मिल जाती है, बच्चे को कहीं बाहर कोई अलग वर्टिकल उसको तलाशना नहीं पड़ता है। पहले क्या होता था कि बीटेक करने के बाद में बच्चा जो है वो इंडस्ट्री का जो गैप है उसको फिल करने के लिए वो दिल्ली नोएडा में जाके ट्रेनिंग किया करता था। पर आज की डेट में हमने इंडस्ट्री से पार्टनरशिप की है और उन इंडस्ट्रीज को हम अपने कैंपस पे लेके आए हैं और वो हमारे कैंपस पर ही बच्चों को वो ट्रेनिंग देते हैं। और बच्चा जो वो ट्रेनिंग लेने के लिए पहले बहुत दूर जाया करता था, वो आज उसको यहीं पे मिल जाती है। हमारे कैंपस के अंदर वो सुविधा हमने उपलब्ध करवाई हुई है। हमने कई सारी यूनिवर्सिटीज के साथ में एमओयूज किए हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए। हमने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलाए हैं। हिस्ट्री टिलोटसन यूनिवर्सिटी के साथ में भी हमारे कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम है जहां पर हमारे बच्चे वहां पर जा सकते हैं अमेरिका और अमेरिका के बच्चे यहां पे आ सकते हैं। ऐसे ही हमने कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो फ्रांस की और जर्मनी की है उनके साथ में भी कुछ एमओयूज किए हैं जहां पर बच्चे स्टूडेंट एक्सचेंज में जा सकते हैं। इन्हीं सब चीजों के साथ में हमारे बच्चे जो है वो भविष्य की तैयारी करते हैं और एक अच्छे नागरिक बनते हैं। नागरिक के साथ में एक अच्छे टेक्नोक्रेट बनते हैं जो देश की उन्नति में और भागीदारी में एक अच्छे तरीके से सहयोग देते हैं।
1: सर, आज के टाइम में जहां बच्चे ऑनलाइन सीख रहे हैं या एआई की हेल्प से सीख रहे हैं, ऐसे में इंजीनियरिंग का भविष्य आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए, जहां तक बात है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीखने की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक एडेड एडवांटेज है जो पहले बच्चों को नहीं मिलती थी, है ना। अब मिलना शुरू हुई है तो इसको बच्चे एडेड एडवांटेज के तौर पर लें, नहीं तो जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का काम है वो यूट्यूब पे नहीं चल सकता। यूट्यूब पे आप खाली लर्निंग कर सकते हैं, पर अगर आपको जो है टीम वर्क में काम करना है तो आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा। आपको लैब एक्सपोजर लेना है तो आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा। आपको और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर लेना है तो आपको इंडस्ट्री में जाना होगा। तो जो गैप है, जो टीम वर्क और जो मेंटोरशिप है, जो वो टीचर के सामने बैठ के बच्चा अपनी प्रॉब्लम जब रखता है, टीचर उसके ऊपर 1-to-1 उसकी काउंसलिंग करता है, वो सब चीजें यूनिवर्सिटी में ही, कैंपस में ही मिल सकती है, वो यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो यूट्यूब को बच्चा जो है एक एडेड एडवांटेज ले और उससे ज्यादा कुछ ना, उसकी एक फैसिलिटी है।
1: ठीक है सर, अब आगे बढ़ें और बात करें एआई को लेकर, क्या कहना चाहेंगे?
0: एआई से तो मैं ये देख रहा हूं पिछले काफी समय से कि एआई जो है वो अगर ना हो तो आज के समय में आधे लोगों की जॉब चली जाएगी। लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं एआई के ऊपर और मैं ये कहना चाहता हूं कि उनकी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं। आने वाले समय में क्या होगा कि जो इंजीनियर्स, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो एआई नहीं सीखेंगे, उनके लिए सीखना मजबूरी होगी, नहीं सीखेंगे तो वो शायद कॉम्पीट ना कर पाए अपनी स्किल्स में। क्योंकि अगर आप नॉर्मल स्किल्स सीख के आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, वहीं पर नॉर्मल स्किल्स के साथ में किसी इंजीनियर ने एआई की भी हेल्प ली हुई है तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो 4x बढ़ जाती है, 5x बढ़ जाती है। तो जब 5x वाला एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री के पास में अवेलेबल होगा तो वो नॉर्मल प्रोफेशनल क्यों लेगी? तो एआई सीखना सबकी मजबूरी बनेगी और वो बहुत अच्छा भी होगा, क्योंकि एआई जो काम आप नॉर्मली जो है पूरे दिन में करते हैं, एआई उसको 5 मिनट में आपके लिए फैसिलिटेट कर देता है। तो आपका पूरा दिन बचता है, वो पूरा दिन आपके लिए और वैल्यूएबल चीजें करने के लिए बचा हुआ है, आप उसमें बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं।
1: सर, एम्प्लॉयबिलिटी गैप भी आजकल थोड़ा बढ़ चुका है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी गैप इसलिए है कि बच्चा कॉलेज आता है, आज की डेट में थ्योरी पढ़ता है, एग्जाम पास करता है, उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो एग्जाम पास करना है। इंडस्ट्री एग्जाम पास नहीं मांगती है, इंडस्ट्री मांगती है उसके अंदर उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी प्रेजेंटेशंस, उसका डिसिप्लिन, उसके अंदर और वैल्यूज जो इंडस्ट्री में चाहिए होती है वो चीज मांगती है। बच्चा सिर्फ पास होना जानता है। वो गैप हटेगा जब कैपेसिटी बिल्डिंग की बात होगी, स्किल एनहांसमेंट की बात होगी, तो ये गैप अपने आप हट जाएगा। हम मोर ओवर जो है फोकस करते हैं, जो आमतौर पर जो लोग फोकस करते हैं वो करते थ्योरी के ऊपर। हमारी जो अप्रोच है शुभारती के अंदर वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, स्टूडेंट सेंट्रिक है। तो इन्हीं सभी सोच के साथ में बच्चे को हम शिक्षा देते हैं। इंजीनियरिंग शिक्षा जो है वो इन्हीं पद्धति के ऊपर दी जाती है। बच्चे को ज्यादा ज्यादा

0: लैब के अंदर टाइम उसका स्पेंड करवाते हैं, तो जब वो स्किल उसकी डेवलप होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, तो वो गैप अपने आप खत्म हो जाएगा।
1: सर, कोई नए कोर्सेज जो अभी स्टार्ट हुए हों उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे?
0: देखिए, हमने कई सारी क्रॉस डिसिप्लिन कोर्सेज को भी यहाँ पर स्टार्ट किया है। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में जनरेटिव एआई को तो हमने पूरा सारे डिसिप्लिन में हमने डाल दिया है। और आप मैकेनिकल की बात करते हैं तो मैकेनिकल में हम ऑटोमेशन में आ जाते हैं, मैकेनिकल प्लस ऑटोमेशन आता है। हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल के साथ में हम जो ग्रिड मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम एम्बेडेड सिस्टम के साथ में आईओटी की बात करते हैं। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी जो चीजें हैं ये बड़ा हेल्पफुल होती है बच्चों के लिए, और हम रेडी हो रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 की तरफ।
1: सर, आप बात करें स्टार्टअप्स की या बात करें प्लेसमेंट की, प्रायोरिटी पर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग?
0: देखिए, जहां तक बात आती है प्लेसमेंट्स की, मेरा मानना है प्लेसमेंट्स भी जरूरी है, बट हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विचार है और हमारे जो संस्थापक महोदय हैं उनका भी विचार है कि बच्चों को स्किल्ड बनाकर हम बच्चों को नए नए उद्यम जो है वो शुरू करवाएं। स्टार्टअप इंडिया के तहत हम उनसे स्टार्टअप खुलवाएं, उनके एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर उनकी स्किल्स डेवलप करवाकर उनसे अच्छे अच्छे इनिशिएटिव, उनके अच्छे अच्छे कोलैबोरेशन करवाएं। उसी क्रम में हमने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल की स्थापना की, हमने स्टार्टअप सेल की स्थापना की, जो बच्चों को आए दिन ये उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है उसके लिए वो रेडी करते हैं। जहां तक बात आती है प्लेसमेंट की, तो बच्चा जो इन तैयारी से बिछड़ जाता है, मतलब कहें तो वो ना तो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कोई कोर्स करता है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, ना वो स्टार्टअप के ऊपर कोई लर्निंग करता है, तो मैं समझूंगा उस बच्चे को तो कम से कम शुरुआत में 1-2 साल नौकरी करनी चाहिए। नौकरी का क्या एनवायरमेंट होता है, अपने अपने कलीग्स को कैसे डील करना है, प्रेशर को कैसे डील करना है, अपने कस्टमर को कैसे डील करना है, फिर वो सब चीजें जो हमारे यूनिवर्सिटीज में उसको फ्री में मिल रही है वो प्लेसमेंट में जाके कंपनीज में वो चीज जब तक नहीं लेगा, जब तक वो एक सफल उद्यमी नहीं बन सकता, एक सफल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। तो प्लेसमेंट उन लोगों के लिए जरूरी है जो हमारे यहाँ पर ये स्किल कोर्सेज नहीं कर रहे हैं, नहीं तो स्टार्टअप तो बहुत अच्छा है।
1: सर, आप बात करना चाहेंगे आपकी लीडर फिलोसफी के बारे में?
0: देखिए, मैं सबसे पहले मैं विश्वास करता हूँ कि डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द स्पीड। जो आपकी दिशा है वो महत्व रखती है, आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं वो चीज सेकेंडरी है। अगर आपने गलत दिशा चूज कर ली और उस पर स्पीड से भागे जा रहे हैं तो वो दिशा आपको गलत गोल की तरफ ले जाएगी। तो अपने आप को, बच्चों को जो मार्केट में इस टाइम पर जो रिक्वायरमेंट है उसको एनालाइज करना चाहिए। और मैं कहूंगा कि आज की डेट में एआई का ट्रेंड है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स मार्केट में है, और कुछ नहीं तो क्या क्या चीज मार्केट में चाहिए, बच्चे उस पर जाएं। और इंजीनियरिंग में कैसे सक्सेसफुल बना जाता है एक करियर के लिए, बच्चे को क्या क्या तैयारी करनी होती है, कम से कम वहां से सीख ले। हम तो सिखा ही रहे हैं, हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप सेल के अंदर ये सब चीजें सिखाई जाती है, हमारे यहाँ पे स्टार्टअप सेल में ये सब चीजें सिखाई जाती है, रिसर्च का एक पूरा बहुत बड़ा इकोसिस्टम हमारे यहाँ पर है। उनसे अलग अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो फिर उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। उस मेहनत के लिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपको अपने अंदर इम्बाइव करनी होगी, और थ्रू आउट लाइफ ये दोनों चीजें तो आपके अंदर रहनी ही चाहिए, अगर आपको आपकी दिशा और दशा दोनों सही है तो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी कमाल की जानकारी देने के लिए। एंड अब आपसे मैसेज लेना चाहेंगे हमारे यूथ के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए।
0: देखिए, लाइफ में अगर मैं कहूंगा कि इंजीनियरिंग में भी कोई एक छोटा सा कोई शॉर्टकट से कोई आप जल्दी सक्सेस नहीं ले सकते। सक्सेस लेने के लिए आपको डिसिप्लिन होना, अपनी कोर वैल्यूज को कंसिस्टेंटली अपने अंदर मेंटेन करना, जो आपकी अच्छी वैल्यूज है उनके साथ में, और एक रेस्पेक्टफुल एनवायरमेंट में डिसिप्लिन सिंसियरिटी के साथ में अपने काम पर फोकस करना। अगर नौकरी मिलना आपका टारगेट है तो आप गलत दिशा में हैं। नौकरी लेना बहुत आसान है, पर नौकरी पर बने रहना उसके लिए आपको ताउम्र आपको अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, आपको स्किल एनहांसमेंट करने होंगे, और वो जरूरी भी है। तो मेरा यही मैसेज आज की युवा पीढ़ी के लिए कि अपने आप को हमेशा अग्रसर रखें, नई नई टेक्नोलॉजी सीखें, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है। आने वाले 5 साल में एक पूरी दुनिया जो है ट्रांसफॉर्म होने जा रही है एआई की मदद से, तो क्या हमारी पीढ़ी उसके लिए तैयार है? उसके लिए तैयार होना है तो हमें अपनी सोच को, अपने कार्यस्थल को, अपने पूरे इकोसिस्टम को अपने हिसाब से अपने आप को उसके अंदर ढालना होगा। जो उस इकोसिस्टम के अंदर जितनी भी अच्छी खूबियां हैं उसको हमें इम्बाइब करना होगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड अभी जो श्रोता हमें इस वक्त सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, आप इंजीनियरिंग के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप जरूर एडमिशन ले सकते हैं स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। बाकी फिलहाल जाइए कहीं मत, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

स्क्रीन से नजरें हटाइए, अपनों से नजरें मिलाइए। दिन में कम से कम एक घंटा अपने मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब पर रखें और असली बातें करें। डिजिटल दुनिया से थोड़ा ब्रेक असली सुकून के लिए। कनेक्ट विद पीपल नॉट वाईफाई। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शे पंकज। और चलिए जी अभी आपसे कर लेते हैं एक क्विज। इस क्विज का जवाब अगर आपने सही दे दिया और सबसे पहले दे दिया तो आपको मिलेगा मौका मेरे शो में आने का, मेरे साथ बात करने का और हमारा स्टूडियो देखने का। ये मौका आपको मिलने वाला है। एंड क्विज बड़ा आसान सा होता है मेरा, लेकिन कंडीशन यही होती है जो मैंने आपको बता दी बातों बातों में कि आपको जवाब सबसे पहले देना होगा और करेक्ट देना होगा। सो फिलहाल क्विज ध्यान से सुनिएगा। आपको मुझे बताना है लाहौर जो गाना है गुरु रंधावा का, इस गाने के लिरिक्स किसने लिखे हैं। आपको बस उस शख्स का नाम मुझे बताना है। कैसे आप मुझे बता सकते हैं, आपको जाना होगा हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर। फेसबुक यानी कि मेटा पर भी आप हमें ढूंढ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें ढूंढ सकते हैं और अपना जवाब वहां पर हमें भेज सकते हैं। बाकी आपके जवाब का मैं वेट करूंगा अपकमिंग गाने के साथ। सो जल्दी से जवाब अपना भेजिए।

0: कि डॉक्टर साहब हमें थोड़ा सा दुविधा है मन में कि IVF से बच्चा हमारा अपना ही खून होगा कि नहीं होगा, ये अपने मन से आप ये शंका हटा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ही के स्पर्म और आप ही के एग्स को यूज किया जाता है एम्ब्रियो बनाने के लिए, आपके अपने ही गैमेट्स को यूज किया जाता है।
1: अब आपके आंगन में भी गूंजेगी बच्चों की गिलकारियां। संपर्क कीजिए ब्लेस्ड फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, कट रोड, मेरठ। कॉन्टैक्ट 8650554433।
2: निसंतानता से पूरी तरह से छुटकारा, आइए ब्लेस्ड फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, डॉक्टर अलका गर्ग जी के पास।

ऑलराइट जी, मैं हूँ आपके साथ आपका अपना बिंदास आर जे पंकज, और अभी अपने स्टूडियो में बैठा हूँ, आपसे लाइव बातें शाते कर रहा हूँ। और थोड़े टाइम पहले अभी आपसे मैंने किया था एक क्विज, जिसमें मैंने आपसे पूछा था लाहौर जो गाना है गुरु रंधावा का, इस गाने के लिरिक्स किसने लिखे थे, उसका नाम बस आपको मुझे बताना था, उस शख्स का नाम जिसने इस गाने को लिखा था, लिरिक्स इस गाने के लिखे थे। तो कई सारे जवाब मेरे पास आए हुए हैं, लेकिन अब सही जवाब मुझे चुनना है, और वो जवाब चुनना है कि जो सबसे पहले आया है। तो मुझे जो जवाब सबसे पहले मिला हुआ है, ये जवाब मिला हुआ है अनुव का। इन्होंने मुझे बताया है कि गुरु रंधावा का जो गाना है लाहौर, इस गाने के लिरिक्स गुरु रंधावा ने ही लिखे हैं। वही वाह, आपका जवाब बिल्कुल सही है, और चेक करने के बाद आपका जवाब भी हमें पता चलता है कि आपने जवाब भी हमें सबसे पहले भेजा है। सो लाहौर गाने के लिरिक्स गुरु रंधावा ने लिखे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, और इन्होंने ही इस गाने को गाया भी है, ये तो सभी जानते हैं। एंड अनुव, आपको मिल रहा है मौका मेरे शो में आने का और हमारा स्टूडियो देखने का, यहाँ पर बात करने का, तो जल्दी आइए, आपसे बातें करते हैं यहाँ पर ढेर सारी। फिलहाल जाइएगा कहीं मत, सुनते रहिए ऐसे ही आपके अपने रेडियो स्टेशन को, यानी कि आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM को।

जिंदगी के बाद भी किसी की आंखों की रोशनी या धड़कन बनिए। आपका ये एक फैसला किसी एक की तो जिंदगी बेहतर बना ही सकता है। अंगदान महादान, इसी प्यारे संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: जय हिंद, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज, और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास अतिथि। आप हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन, आप डीन प्रोफेसर हैं केरल और मां सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में। सर स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद पंकज जी, जय हिंद।
0: सर, केरल और मां सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के बारे में आज बातें करने के लिए हम यहां पर मौजूद हुए हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारे कॉलेज के बारे में, किस प्रकार के कोर्सेज हम यहां पर चला रहे हैं।
1: जय हिंद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके माध्यम से देश और दुनिया को केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के बारे में बता पाऊंगा। देखिए, केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ का एक अहम कॉलेज है, और जिसमें कि हम विज्ञान से जुड़े सभी कोर्सेज को आमंत्रित करते हैं, जैसे कि लाइफ साइंसेज के कोर्सेज हैं, बेसिक साइंसेज के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के हैं, एग्रीकल्चर के हैं और फॉरेंसिक साइंस के कोर्सेज हैं।
0: सर, अब इसको थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए समझना चाहेंगे, आफ्टर ट्वेल्थ वाले कोर्सेज कौन है, सबसे पहले उन पर बात कर लेते हैं।
1: जी जी, देखिए, आफ्टर ट्वेल्थ वाले कोर्सेज हमारे जो हैं वो सभी ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, जैसे कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी है, बीएससी बायोकेमिस्ट्री है, बीएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, बीएससी फिजिक्स है, बीएससी मैथमेटिक्स है। ये सभी कोर्सेज कोई भी विद्यार्थी 12वीं पास करने के बाद कर सकता है। इसके लिए जो योग्यता है वो ये है कि सामान्य वर्ग के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 12वीं में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना जरूरी है, जबकि एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स के साथ विद्यार्थी जो उत्तीर्ण करते हैं वो इन सभी कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ साइंसेज से संबंधित जो कोर्सेज हैं उसमें पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होना जरूरी है, उसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं उसमें कोई भी विद्यार्थी पीसीएम या पीसीबी वाला विद्यार्थी उसमें प्रवेश ले सकता है।
0: अब थोड़ा सर आगे चलते हैं और जानते हैं, जैसे ट्वेल्थ के बाद तो आपने ये सभी कोर्सेज बताए, अब इसमें आगे अगर कोई मास्टर में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वहां पे क्या मतलब क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए?
1: देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो विद्यार्थी ग्रेजुएट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे ही कॉलेज में पूर्ण व्यवस्था है। सभी विभाग जितने भी हैं हमारे यहाँ पर वो सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, यानी कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमसीए, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, सभी कोर्सेज हम ऑफर करते हैं। साथ ही मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं या कहीं के विद्यार्थी हैं उसके लिए भी जो न्यूनतम अर्हता है वो समान है, यानी कि ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ उसने यदि उत्तीर्ण किया है तो हमारे यहाँ पे वो सभी जितने भी कोर्सेज हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उसमें वो प्रवेश लेने के लिए अर्ह हैं।
0: सर, अभी जैसे हमने आफ्टर ट्वेल्थ की भी समझ ली और आफ्टर ग्रेजुएशन की ये समझ लिए हैं कोर्सेज, अब एक बात ये है, जैसे ये कोर्सेज कर लेता है बच्चा, चाहे वो बैचलर में कर ले या मास्टर्स में कर ले, करियर के ऑप्शंस उसके लिए क्या क्या हो जाते हैं?
1: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि आजकल कोई भी विद्यार्थी हो या माता पिता हो, सबका मेन फोकस यही रहता है कि कोई भी शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके विद्यार्थी को एक अच्छी जॉब मिल सके। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति है 2020 उसका पूरी तरह से अनुपालन किया जा रहा है, और हमारा जो फोकस है वो केवल किताबी ज्ञान देने पर नहीं है, उसके अलावा हमने अपने जो कुरिकुलम है उसमें स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज और जो आपके कम्युनिकेटिव कोर्सेज हैं वो सभी कोर्स हमने उसमें ऐड किए हुए हैं। उससे क्या होता है कि जितने विद्यार्थी हैं वो किताबी ज्ञान के साथ साथ कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और जो स्किल बेस्ड नॉलेज है वो अपने अंदर डेवलप करते हैं। उससे क्या होता है कि हम विद्यार्थियों को अच्छी जॉब के लिए तैयार करते हैं और वो बहुत आसानी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं।
0: सर, अब एक सवाल ये भी आता है कि तमाम कॉलेजेस हैं लेकिन छात्र छात्राएं जो हैं 12वीं पास करके आने वाले हों या ग्रेजुएट करके आने वाले हों, वो केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस क्यों चुने?
1: देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा कुरिकुलम है वो नई शिक्षा नीति 2020 के ऊपर आधारित है। हमारा पूरा फोकस बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप करना है ताकि जब वो अपनी डिग्री लेकर समाज में उतरे तो वो अपने आप को साबित कर सके। उनके पास व्यवहारिक ज्ञान होने की वजह से, उनके पास स्किल्स होने की वजह से वो बड़ी आसानी के साथ दूसरे कॉलेज से जो विद्यार्थी आते हैं उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं।
0: सर, अब जो विद्यार्थी हमें सुन रहे हैं और इस साल ट्वेल्थ करने जा रहे हैं, कर चुके हैं, वो कॉलेज जाना चाहें तो क्या एड्रेस है विजिट के लिए, एक बार बता दीजिए।
1: देखिए, बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों को जो भी विजिट करना चाहें। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश करने के बाद वहीं पर आप किसी से पूछेंगे फैकल्टी ऑफ साइंस, साइंस कॉलेज, तो हमारा एक बहुत सुंदर सा कॉलेज उनको दिखाई देगा। वहां पे जाइए रिसेप्शन पे, हम उनको अपना पूरा कॉलेज के बारे में वहां पे बताएंगे।
0: सर, हमारे यहाँ कॉलेज में क्या विशेषता है जो किसी भी छात्र या छात्रा को अट्रैक्ट करेगी यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ पढ़ाई करने के लिए?
1: जी जी पंकज जी, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है, कॉलेज के अंदर भी एक प्लेसमेंट सेल है और विश्वविद्यालय की एक प्लेसमेंट सेल है। तो हम जैसे ही विद्यार्थी प्रवेश लेता है तो प्रथम वर्ष से ही उसको पर्सनलिटी डेवलपमेंट क्लासेस के द्वारा, इंग्लिश कम्युनिटी क्लासेस के द्वारा उसको प्लेसमेंट के लिए तैयार करते हैं, ताकि वो अपने आप को 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर वो अपने आप को तैयार कर सके। दूसरा मेरा कहना जो है, हमारा जो मेन फोकस है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर है। हमारी जो लैबोरेटरीज है, मैं सभी विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया एक बार आएं और हमारी लैबोरेटरीज देखें। हमारे पास जितने भी एडवांस इक्विपमेंट्स हैं वो सभी हमारी लैबोरेटरीज में हैं और हमारे विद्यार्थी उन पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी करते हैं। उसके अलावा समय समय पर हम जो एक्सपर्ट लेक्चर्स हैं आईआईटीज एनआईटीज और जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स लोग हैं उनको आमंत्रित करते हैं, वो हमारे विद्यार्थियों को ये बताते हैं कि वॉट इंडस्ट्री वॉन्ट, कि आज इंडस्ट्री क्या चाह रही है, उसके हिसाब से हम अपने बच्चों की स्किल्स को तैयार करते हैं। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह की तैयारी केरल वर्मा सुभारती कॉलेज के अलावा कोई दूसरा कॉलेज नहीं कर रहा होगा।
0: सर, एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा?
1: देखिए, एडमिशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर आप हमारे कॉलेज में आइए, वहां पर आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद हम आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको फीस जमा करके रजिस्ट्रेशन आपका एडमिशन हो जाता है।
0: तो अभी आपने सुना केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के डीन प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन सर को। उन्होंने तमाम कोर्सेज के बारे में बताया जो आफ्टर 12th आप कर सकते हैं या आफ्टर ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में। अब उन्हें सुनते हैं, उन छात्र छात्राओं को जो यहां पर कोर्सेज कर रहे हैं, वो आपको अपना अनुभव साझा करेंगे। आइए उन्हें सुनते हैं।
2: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है वैष्णवी और मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूं और मैंने 2024 में स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में एडमिशन लिया था एंड मैं बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के अंदर हूं। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जहां पे आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर एंड रियल रिसर्च की जरूरत पड़ती है एंड इस कॉलेज ने मुझे रियल रिसर्च का एक्सपोजर प्रोवाइड करा एंड फैकल्टी के गाइडेंस की हेल्प से मैंने अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च पे भी काम किया है एंड उसके साथ साथ उनके गाइडेंस एंड उनके सपोर्ट से एंड उनकी हेल्प से मैंने क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करी, जिसके हेल्प से मैंने एक बायोमेडिकल डिवाइस पे भी काम किया जिसको मैंने ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे प्रेजेंट भी करा है एट AIU। इस कॉलेज ने मुझे लैब स्किल्स एंड रियल एक्सपोजर एंड उसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग एंड बहुत गाइडेंस एंड कॉन्स्टेंट मेंटर सपोर्ट भी प्रोवाइड करा है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी से जैसे डायनेमिक फील्ड में। एंड मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है ये बोलने में कि मैंने बेस्ट कॉलेज चूज करा है एंड आपको भी ये कॉलेज चूज करना चाहिए। अगर आपको एक रियल टाइम एक्सपोजर चाहिए, आपको बढ़िया लैब्स चाहिए एंड आपको रियल रिसर्च पे काम करना है एंड उसको नेशनल लेवल पे प्रेजेंट करना है। थैंक यू।
3: जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज कुणाल चौधरी एंड आई एम करंटली अ सेकंड ईयर स्टूडेंट एट केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस। आई हैव टेकन माय एडमिशन इन 2024 एंड आई हैव प्रेजेंटेड माय रिसर्च एट AIU एंड आल्सो प्रेजेंटेड माय बायोमेडिकल बेस्ड स्टार्टअप एट AIU। केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस इज अ वेरी गुड कॉलेज। इट प्रोवाइड हैंड्स ऑन लैब ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस एंड ऑल्सो द फैकल्टी हेयर आर वेल एक्सपीरियंस। दे ऑल्सो प्रोवाइड स्टूडेंट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड ऑल्सो इंक्रीज द साइंटिफिक टेम्परामेंट आउट देयर। The future outcome from this course can be academia, research, healthcare startups, medical based startups and biotechnology. Thank you. Jai Hind.
4: Jai Hind everyone. I am Asna Suhail, currently pursuing BSc Microbiology from Keral Verma Subharti College of Science. The first time I looked into the microscope, I was fascinated by its beauty. कोई ऑर्गेनिज्म जो इतना छोटा होता है हमें नजर भी नहीं आता, वो मैग्नीफाई होकर कितना खूबसूरत लगता है। एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड टू परस्यू माइक्रोबायोलॉजी एज माय करियर एंड टू अकम्प्लिश दिस ड्रीम आई चोज सुभारती कॉलेज, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं दी जाती बल्कि प्रैक्टिकल्स पर भी फोकस किया जाता है। यहाँ की वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स ने मेरी बहुत हेल्प करी है। करंटली आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट That is role of enzymes in food and feed industry, जो मेरे आगे के करियर से भी रिलेटेड है। यहाँ पर हमें इंडस्ट्रियल विजिट्स पर भी ले जाया जाता है, जिसमें से एक था मदर डेयरी, विच इज माई ड्रीम कंपनी। आगे जाकर मैं फूड इंडस्ट्रीज में काम करना चाहती हूँ एज अ फूड एनालिस्ट, ताकि मैं फूड सेफ्टी इंश्योर कर सकूँ फॉर अ बेटर इंडिया। ओवरऑल सुभारती कॉलेज मेरे फ्यूचर प्लान को शेप करने में मेरी हेल्प कर रहा है एंड आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। जय हिंद, जय भारत।
5: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम जानवी है और मैं बीएससी फॉरेंसिक साइंस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं हमारे कॉलेज केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस की फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट का पार्ट हूँ।
6: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान जैन है और मैं बीएससी सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ फॉरेंसिक साइंस में एट केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस।
5: हमारे यहाँ नॉलेज सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं रहती है, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है जो कि हमारे करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ फॉरेंसिक साइंस सिर्फ बुक्स तक ही लिमिटेड नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें इक्वली मिलती है। इन्वेस्टिगेशन, फिंगरप्रिंट एनालिसिस एंड टॉक्सिकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स हम सिर्फ थियोरेटिकल नहीं पढ़ते हैं बट हम उनका प्रैक्टिकल भी करते हैं।
6: जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि हम फिंगरप्रिंट का एनालिसिस करते हैं, तो हम लोग लैबोरेटरीज में ये जानते हैं कि हम उन्हें कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे उस चीज को कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सॉलिड एविडेंसेस। इसी के साथ साथ हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की स्टडी भी करते हैं, फोर्ज्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ऑल्टर्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, और हम लोग यहाँ पर फिंगरप्रिंट के साथ साथ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की भी स्टडी करते हैं, कैसे हम फोर्ज्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ऑल्टर्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट और ऑब्लिक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को स्टडी करते हैं थ्रू यूवी लाइट, आईआर लाइट एंड माइक्रोस्कोप। हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उसे कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, ये सब हम अपनी लैबोरेटरीज में सीखते हैं और सारे ही इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं जिससे हम आगे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। और मैं चाहूंगी कि आप सब भी आए और हमारी लैब विजिट करें और देखें कि यहाँ पे कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं और इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं चीजें सीखने के लिए। थैंक यू सो मच।
5: मुझे लगता है कि फॉरेंसिक साइंस सिर्फ एक कोर्स नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सच को सामने लाना और जस्टिस को सपोर्ट करना, और हमारे टीचर्स हमें इसी डायरेक्शन में गाइड करते हैं। मैं अपने कॉलेज के लिए और अपने टीचर्स के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि वो हमें इतने अच्छे से हमारे करियर के लिए और हमारे फ्यूचर प्लान्स के लिए गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच।
0: तो अभी आपने सभी स्टूडेंट्स को सुना, सबने अपने अच्छे अच्छे अनुभव आपके साथ साझा किए, और आप भी आइए केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में एडमिशन लीजिए। आप इस साल ट्वेल्थ कर रहे हैं तो उन कोर्सेज को आप कर सकते हैं जो आफ्टर ट्वेल्थ होंगे, या अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आफ्टर ग्रेजुएशन के कोर्स आप यहां पर आकर कर सकते हैं। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े और इतने तमाम कोर्सेज की जानकारी आपने हमें दी। चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए आपसे एक संदेश जरूर लेना चाहेंगे हम।
1: मेरा बस यही संदेश है सभी विद्यार्थियों को कि देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत करें और अपने आप पर विश्वास रखें, सफलता निश्चित रूप से आप सबको मिलेगी।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: हॉस्पिटल हो या स्कूल या फिर ट्रैफिक जैम, बेवजह हॉर्न बजाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि शोर से सुकून नहीं मिलता, सिर्फ बेचैनी बढ़ती है। शांति बनाए रखें, शहर को बहरा ना बनाएं। नो हॉन्किंग प्लीज। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज। हम रोजाना बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं और बहुत सारे नहीं कर सकते तो कुछ काम तो जरूर अच्छे से कर सकते हैं। जैसे अपने पास हमेशा एक छोटा क्लोथ बैग रखें ताकि बाजार में प्लास्टिक बैग ना लेना पड़े। जी हाँ, जब भी आप बाजार के लिए जाएं तो कपड़े का थैला साथ में हमको जरूर रखकर चलना है। और आपको लगता है कि आप वहां जाकर कुछ खरीदने वाले हैं तो उसे प्लास्टिक की थैली में ना लेकर अपने साथ लिए गए कपड़े के थैले में लें। इसी के साथ अगर सड़क पर कचरा दिखे और डस्टबिन पास हो तो उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दे। एंड इसके बाद आप अपने हाथ धो लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कूड़ा उठाने से गंदे हो जाएंगे। इसी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक प्लेसेस पर किसी को गंदगी फैलाते देखें तो उन्हें प्यार से जरूर समझाएं कि ये गलत है। एंड घर में छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी अपनी धरोहर और अपने धार्मिक मूल्यों के बारे में जरूर बताएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज और एकदम लाइव आपसे मेरी यहां पर बातें शाते हो रही हैं। अभी यहां पर अपने स्टूडियो में बैठा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। अच्छा भाई, हमारी बात यहां पर आपसे होती रहती है, लेकिन शो से पहले या शो के बाद अगर आप हमसे बात करना चाहें तो कैसे करें, है ना? ये आप सोचते होंगे और सोचने वाली बात भी है कि भाई कोई बात मिस हो गई आपसे पूछनी या बतानी तो कैसे बताएं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर, ठीक है? वहां पर आपको जाना है, सर्च करना है आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। आप हमें फेसबुक यानी कि मेटा पर भी ढूंढ सकते हैं, वहां हमारा आपको पेज मिल जाएगा। और इसी के साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं, वहां आपको हमारा अकाउंट मिल जाएगा। दोनों जगह पर जाकर आप हमें फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ऐसा करने से आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे और फिर बात भी कर पाएंगे। तो कनेक्ट नहीं है तो कनेक्ट हो जाइए, बाकी सुनते रहिए ऐसे ही आपके अपने रेडियो स्टेशन को यानी कि आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM को।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

देशभक्ति सिर्फ नारों में नहीं हमारे कर्मों में होनी चाहिए। सरहद पर लड़ना हर किसी के नसीब में नहीं होता, पर एक अच्छा नागरिक बनना हम सबके हाथ में है। आइए शुरुआत करते हैं अपनी रोजाना की आदतों से, क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी तो देश बदलेगा। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: यू ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: तू ही मेरा प्यार है, तू ही मेरा जुनून है, तू ही मेरा दर्द है, तू ही मेरा सुकून है।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920085।

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313.

0: जय हिंद, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज, और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास अतिथि। आप हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन, आप डीन प्रोफेसर हैं केरल और मां सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में। सर स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद पंकज जी, जय हिंद।
0: सर, केरल और मां सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के बारे में आज बातें करने के लिए हम यहां पर मौजूद हुए हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारे कॉलेज के बारे में, किस प्रकार के कोर्सेज हम यहां पर चला रहे हैं।
1: जय हिंद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके माध्यम से देश और दुनिया को केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के बारे में बता पाऊंगा। देखिए, केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ का एक अहम कॉलेज है, और जिसमें कि हम विज्ञान से जुड़े सभी कोर्सेज को आमंत्रित करते हैं, जैसे कि लाइफ साइंसेज के कोर्सेज हैं, बेसिक साइंसेज के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के हैं, एग्रीकल्चर के हैं और फॉरेंसिक साइंस के कोर्सेज हैं।
0: सर, अब इसको थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए समझना चाहेंगे, आफ्टर ट्वेल्थ वाले कोर्सेज कौन है, सबसे पहले उन पे बात कर लेते हैं।
1: जी जी, देखिए, आफ्टर ट्वेल्थ वाले कोर्सेज हमारे जो हैं वो सभी ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, जैसे कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी है, बीएससी बायोकेमिस्ट्री है, बीएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, बीएससी फिजिक्स है, बीएससी मैथमेटिक्स है। ये सभी कोर्सेज कोई भी विद्यार्थी 12वीं पास करने के बाद कर सकता है। इसके लिए जो योग्यता है वो ये है कि सामान्य वर्ग के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 12वीं में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना जरूरी है, जबकि एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स के साथ विद्यार्थी जो उत्तीर्ण करते हैं वो इन सभी कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ साइंसेज से संबंधित जो कोर्सेज हैं उसमें पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होना जरूरी है। उसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं उसमें कोई भी विद्यार्थी पीसीएम या पीसीबी वाला विद्यार्थी उसमें प्रवेश ले सकता है।
0: अब थोड़ा सर आगे चलते हैं और जानते हैं, जैसे ट्वेल्थ के बाद तो आपने ये सभी कोर्सेज बताए, अब इसमें आगे अगर कोई मास्टर में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वहां पे क्या मतलब क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए?
1: देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो विद्यार्थी ग्रेजुएट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे ही कॉलेज में पूर्ण व्यवस्था है। सभी विभाग जितने भी हैं हमारे यहाँ पर वो सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, यानी कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमसीए, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, सभी कोर्सेज हम ऑफर करते हैं। साथ ही मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं या कहीं के विद्यार्थी हैं उसके लिए भी जो न्यूनतम अर्हता है वो समान है, यानी कि ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ उसने यदि उत्तीर्ण किया है तो हमारे यहाँ पे वो सभी जितने भी कोर्सेज हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उसमें वो प्रवेश लेने के लिए अर्ह हैं।
0: सर, अभी जैसे हमने आफ्टर ट्वेल्थ की भी समझ ली और आफ्टर ग्रेजुएशन की ये समझ लिए हैं कोर्सेज, अब एक बात ये है, जैसे ये कोर्सेज कर लेता है बच्चा, चाहे वो बैचलर में कर ले या मास्टर्स में कर ले, करियर के ऑप्शंस उसके लिए क्या क्या हो जाते हैं?
1: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि आजकल कोई भी विद्यार्थी हो या माता पिता हो, सबका मेन फोकस यही रहता है कि कोई भी शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके विद्यार्थी को एक अच्छी जॉब मिल सके। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति है 2020 उसका पूरी तरह से अनुपालन किया जा रहा है, और हमारा जो फोकस है वो केवल किताबी ज्ञान देने पर नहीं है, उसके अलावा हमने अपने जो कुरिकुलम है उसमें स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज और जो आपके कम्युनिकेटिव कोर्सेज हैं वो सभी कोर्स हमने उसमें ऐड किए हुए हैं। उससे क्या होता है कि जितने विद्यार्थी हैं वो किताबी ज्ञान के साथ साथ कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और जो स्किल बेस्ड नॉलेज है वो अपने अंदर डेवलप करते हैं। उससे क्या होता है कि हम विद्यार्थियों को अच्छी जॉब के लिए तैयार करते हैं और वो बहुत आसानी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं।
0: सर, अब एक सवाल ये भी आता है कि तमाम कॉलेजेस हैं लेकिन

0: करना चाहें, स्वामी विवेकानंद भारती विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश करने के बाद वहीं पर आप किसी से पूछेंगे फैकल्टी ऑफ साइंस, साइंस कॉलेज, तो हमारा एक बहुत सुंदर सा कॉलेज उनको दिखाई देगा। वहां पे जाइए रिसेप्शन पे, हम उनको अपना पूरा कॉलेज के बारे में वहां पे बताएंगे।
1: सर, हमारे यहाँ कॉलेज में क्या विशेषता है जो किसी भी छात्र या छात्रा को अट्रैक्ट करेगी यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ पढ़ाई करने के लिए?
0: जी जी पंकज जी, देखिये मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है, कॉलेज के अंदर भी एक प्लेसमेंट सेल है और विश्वविद्यालय की एक प्लेसमेंट सेल है। तो हम जैसे ही विद्यार्थी प्रवेश लेता है तो प्रथम वर्ष से ही उसको पर्सनलिटी डेवलपमेंट क्लासेस के द्वारा, इंग्लिश कम्युनिटी क्लासेस के द्वारा उसको प्लेसमेंट के लिए तैयार करते हैं, ताकि वो अपने आप को 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर वो अपने आप को तैयार कर सके। दूसरा मेरा कहना जो है, हमारा जो मेन फोकस है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर है। हमारी जो लैबोरेटरीज है, मैं सभी विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया एक बार आएं और हमारी लैबोरेटरीज देखें। हमारे पास जितने भी एडवांस इक्विपमेंट्स हैं वो सभी हमारी लैबोरेटरीज में हैं और हमारे विद्यार्थी उन पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी करते हैं। उसके अलावा समय समय पर हम जो एक्सपर्ट लेक्चर्स हैं आईआईटीज, एनआईटीज और जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स लोग हैं उनको आमंत्रित करते हैं। वो हमारे विद्यार्थियों को ये बताते हैं कि वॉट इंडस्ट्री वॉन्ट, कि आज इंडस्ट्री क्या चाह रही है, उसके हिसाब से हम अपने बच्चों की स्किल्स को तैयार करते हैं। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह की तैयारी केरल वर्मा सुभारती कॉलेज के अलावा कोई दूसरा कॉलेज नहीं कर रहा होगा।
1: सर, एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा?
0: देखिए, एडमिशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर आप हमारे कॉलेज में आइए। वहां पर आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद हम आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको फीस जमा करके रजिस्ट्रेशन आपका एडमिशन हो जाता है।
1: तो अभी आपने सुना केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के डीन प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन सर को। उन्होंने तमाम कोर्सेज के बारे में बताया जो आफ्टर 12th आप कर सकते हैं या आफ्टर ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में। अब उन्हें सुनते हैं, उन छात्र छात्राओं को जो यहाँ पर कोर्सेज कर रहे हैं, वो आपको अपना अनुभव साझा करेंगे। आइए उन्हें सुनते हैं।
2: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है वैष्णवी और मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट हूं और मैंने 2024 में स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में एडमिशन लिया था एंड मैं बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के अंदर हूं। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जहां पे आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर एंड रियल रिसर्च की जरूरत पड़ती है एंड इस कॉलेज ने मुझे रियल रिसर्च का एक्सपोजर प्रोवाइड करा एंड फैकल्टी के गाइडेंस की हेल्प से मैंने अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च पे भी काम किया है एंड उसके साथ साथ उनके गाइडेंस एंड उनके सपोर्ट से एंड उनकी हेल्प से मैंने क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करी, जिसकी हेल्प से मैंने एक बायोमेडिकल डिवाइस पे भी काम किया जिसको मैंने ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे प्रेजेंट भी करा है एट AIU। इस कॉलेज ने मुझे लैब स्किल्स एंड रियल एक्सपोजर एंड उसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग एंड बहुत गाइडेंस एंड कॉन्स्टेंट मेंटर सपोर्ट भी प्रोवाइड करा है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी से जैसे डायनेमिक फील्ड में। एंड मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है ये बोलने में कि मैंने बेस्ट कॉलेज चूज करा है एंड आपको भी ये कॉलेज चूज करना चाहिए। अगर आपको एक रियल टाइम एक्सपोजर चाहिए, आपको बढ़िया लैब्स चाहिए एंड आपको रियल रिसर्च पे काम करना है एंड उसको नेशनल लेवल पे प्रेजेंट करना है। थैंक यू।
3: जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज कुणाल चौधरी एंड आई एम करंटली अ सेकंड ईयर स्टूडेंट एट केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस। आई हैव टेकन माय एडमिशन इन 2024 एंड आई हैव प्रेजेंटेड माय रिसर्च एट AIU एंड आल्सो प्रेजेंटेड माय बायोमेडिकल बेस्ड स्टार्टअप एट AIU। केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस इज अ वेरी गुड कॉलेज। इट प्रोवाइड हैंड्स ऑन लैब ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस एंड ऑल्सो द फैकल्टी हेयर आर वेल एक्सपीरियंस। दे ऑल्सो प्रोवाइड स्टूडेंट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड ऑल्सो इंक्रीज द साइंटिफिक टेम्परामेंट आउट देयर। The future outcome from this course can be academia, research, healthcare startups, medical-based startups and biotechnology. Thank you. Jai Hind.
4: Jai Hind everyone. I am Asna Suhail, currently pursuing BSc Microbiology from Keral Verma Subharti College of Science. The first time I looked into the microscope, I was fascinated by its beauty. कोई ऑर्गेनिज्म जो इतना छोटा होता है हमें नजर भी नहीं आता, वो मैग्नीफाई होकर कितना खूबसूरत लगता है। एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड टू परस्यू माइक्रोबायोलॉजी एज माय करियर एंड टू अकम्प्लिश दिस ड्रीम आई चोज सुभारती कॉलेज, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं दी जाती बल्कि प्रैक्टिकल्स पर भी फोकस किया जाता है। यहाँ की वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स ने मेरी बहुत हेल्प करी है। करंटली आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट That is role of enzymes in food and feed industry, जो मेरे आगे के करियर से भी रिलेटेड है। यहाँ पर हमें इंडस्ट्रियल विजिट्स पर भी ले जाया जाता है, जिसमें से एक था मदर डेयरी, which is my dream company। आगे जाकर मैं फूड इंडस्ट्रीज में काम करना चाहती हूँ as a

0: food analyst ताकि मैं food safety ensure कर सकूं for a better India. Overall, Subharti College मेरे future plans को shape करने में मेरी help कर रहा है and I'm proud to be a part of it. जय हिंद, जय भारत.
1: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम जानवी है और मैं बीएससी फॉरेंसिक साइंस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ. मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं हमारे कॉलेज केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस की फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट का पार्ट हूँ.
2: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान जैन है और मैं बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ फॉरेंसिक साइंस में एट केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस.
1: हमारे यहाँ नॉलेज सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं रहती है, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है जो कि हमारे करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. हमारे यहाँ फॉरेंसिक साइंस सिर्फ बुक्स तक ही लिमिटेड नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें इक्वली मिलती है. इन्वेस्टिगेशन, फिंगरप्रिंट एनालिसिस एंड टॉक्सिकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स हम सिर्फ थियोरेटिकल नहीं पढ़ते हैं बट हम उनका प्रैक्टिकल भी करते हैं.
2: जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि हम फिंगरप्रिंट का एनालिसिस करते हैं तो हम लोग लैबोरेटरीज में ये जानते हैं कि हम उन्हें कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे उस चीज को कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सॉलिड एविडेंसेस. इसी के साथ साथ हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की स्टडी भी करते हैं, फोर्ज्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ऑल्टर्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, और हम लोग यहाँ पर फिंगरप्रिंट के साथ साथ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की भी स्टडी करते हैं. कैसे हम फोर्ज्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ऑल्टर्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट और ऑब्लिक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को स्टडी करते हैं थ्रू यूवी लाइट, आईआर लाइट एंड माइक्रोस्कोप. हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उसे कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं ये सब हम अपनी लैबोरेटरीज में सीखते हैं और सारे ही इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं जिससे हम आगे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को. और मैं चाहूंगी कि आप सब भी आए और हमारी लैब विजिट करें और देखें कि यहाँ पे कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं और इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं चीजें सीखने के लिए. थैंक यू सो मच.
1: मुझे लगता है कि फॉरेंसिक साइंस सिर्फ एक कोर्स नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सच को सामने लाना और जस्टिस को सपोर्ट करना, और हमारे टीचर्स हमें इसी डायरेक्शन में गाइड करते हैं. मैं अपने कॉलेज के लिए और अपने टीचर्स के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि वो हमें इतने अच्छे से हमारे करियर के लिए और हमारे फ्यूचर प्लान्स के लिए गाइड करते हैं. थैंक यू सो मच.
3: तो अभी आपने सभी स्टूडेंट्स को सुना, सबने अपने अच्छे अच्छे अनुभव आपके साथ साझा किए और आप भी आइए केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में एडमिशन लीजिए. आप इस साल ट्वेल्थ कर रहे हैं तो उन कोर्सेज को आप कर सकते हैं जो आफ्टर ट्वेल्थ होंगे, या अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आफ्टर ग्रेजुएशन के कोर्स आप यहां पर आकर कर सकते हैं. बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े और इतने तमाम कोर्सेज की जानकारी आपने हमें दी. चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए आपसे एक संदेश जरूर लेना चाहेंगे.
4: मेरा बस यही संदेश है सभी विद्यार्थियों को कि देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क. मेहनत करें और अपने आप पर विश्वास रखें, सफलता निश्चित रूप से आप सबको मिलेगी.

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स 24 घंटे, डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे, मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

0: एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एसपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: पढ़ाई तो सब जगह होती है, पर एक्सीलेंस का होना भी तो जरूरी है। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी इज द रोड टू एक्सीलेंस विच प्रोवाइड्स द स्टूडेंट विद अ सलूब्रियस एनवायरनमेंट, हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड कॉम्पिटेंट फैकल्टी,
1: 18 कॉलेजेस एंड 220 प्लस प्रोग्राम्स। विजिट www.subharti.org।

0: जय हिंद। कैप्टन अमरीक सिंह सुभारती डिफेंस एकेडमी मेरठ,
1: अ प्लेस वेयर सोल्जर्स आर बोर्न टू सर्व द नेशन।
0: वी इम्पार्ट ट्रेनिंग टू यंग एस्पिरेंट्स हु एम टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस टू सर्व द मदरलैंड।
1: कैप्टन अमरीक सिंह सुभारती डिफेंस एकेडमी, जहां कराई जाती है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर के लिए कली ट्रेनिंग। रिटन एग्जाम्स जैसे NDA, CDS और SSB इंटरव्यूज को भी करें एक बार में क्लियर विद सुभारती डिफेंस एकेडमी।
0: कैप्टन अमरीक सिंह सुभारती डिफेंस एकेडमी उनके लिए जो नौकरी नहीं बल्कि देश सेवा करना चाहते हैं।
1: तो आज ही ज्वाइन करें। फॉर मोर क्वेरीज यू मे कॉन्टेक्ट 9045954341 एंड 9068899913, और यू कैन ऑल्सो विजिट www.subhatidefense.com।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए, वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल।